0: तैयार हूँ, बार बार कह भी रहा हूँ कि भाई मुझे अगर मेरा तरीका पसंद नहीं है, मैं अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए काम करना चाहता हूँ, गंगम जमनी तहजीब के लिए काम करना चाहता हूँ, अगर ये आप लोगों को बर्दाश्त नहीं है तो आप मुझे गिरफ्तार कर लो।
1: And now, almost a year later, the Allahabad High Court has delivered a sharp message. The High Court has rejected Tauqi Raza's bail plea in the Bareilly violence case, and the court has set the record straight. Flagging the Sartan Sajuda threat, the court said it incites people to armed rebellion. It also asserted that Sartan Sajuda can't be equated with religious slogans such as Jai Shri Ram, Har Har Mahadev or Allahu Akbar. The court said that those express reverence, while Sartan Sajuda challenges the authority of law and India's sovereignty and integrity. Bareilly wasn't a one-off. The slogan Sartan Sajuda has repeatedly been invoked as a threat of violence. Atela Kanhaiya Lal was infamously murdered outside his shop in Udaipur after supporting Nupur Sharma's remarks. Chemist Umesh Kole was murdered in Amravati after being targeted over his support for her. Lawyer Satendra Bharti in UP's Ghaziabad received a beheading threat for the same reason. Different victims, different places, the same chilling message. Any disagreement with their interpretation of faith and you could pay with your life. Remember, that is not religious devotion. That is the weaponization of religion to intimidate, silence, threaten and eventually kill. Remember, the moment a religious slogan becomes a call for someone's death, your right to practice your faith starts infringing upon the rights of others. Their right to life, and the state must stand firmly on the side of the law. With Pankaj Srivastava in Lucknow, Bureau Report, India Today.
2: I have Maulana Sajid Rashidi, President of the All India Imam Association, joining me on this broadcast. Also with me, Jayanand Dehadra, Advocate Supreme Court, stays on this conversation. Maulana Sahab, High Court ne saaf taur par kaha hai, sartan se juda nahi chal sakta. Ye darasal Bharat mein jo kanun vyavastha hai aur jo Bharat ki samprabhuta hai, sovereignty of India and rule of law, dono ke virudh hai. आप किस रूप में देखते हैं इसे?
3: गौरव भाई, सरतन से जुदा को इस्लाम भी नहीं मानता
2: जी।
3: हमने जब कन्हैया लाल के साथ यह हादसा हुआ था, सबसे पहले हमने कंडम किया था कि इस्लाम नहीं है। लेकिन एक बात बताइए आप, अगर मेरे इष्ट के खिलाफ, मेरे मैसेंजर ऑफ गॉड मोहम्मद साहब के खिलाफ, उनकी पत्नी आयशा के खिलाफ अगर अनर्गल बातें होंगी, तो इस निंदा कानून भी हमारे देश में
2: जी,
3: इस निंदा कानून के तहत उन पर कार्रवाई नहीं होती।
2: नहीं होनी चाहिए, आपने बिल्कुल सही कहा। प्रॉफिट मोहम्मद साहब, पीस बी अपॉन हिम, अगर कोई भी कुछ कहे जो गलत है तो ठोस से ठोस कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन आपको कानून का दरवाजा खटखटाना होगा। ये जो लोग सरतन से जुदा के नारे लगाते हैं, आप कह रहे हैं बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है।
3: बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात देखिए, आपने जो सरतन से जुदा की बातें की और उसमें दो तीन लोगों को आपने कोड किया है, मैं एनसीआरबी का डाटा बताता हूं आपको। 65 लोगों को मॉब लिंचिंग कर दिया गया जय श्री राम का नारा लगाकर। यह आंकड़ा बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। सरतन से जुदा का आंकड़ा जो है वो 3-4 लोगों के साथ हुआ है जिसको हमने कंडम किया, लेकिन जय श्री राम का नारा लगाकर मुसलमानों की मॉब लिंचिंग करना ये बहुत बड़ा आंकड़ा है और उसको हिंदू भाई कंडम
2: नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल गलत है, लेकिन दोनों की आप तुलना जो कर रहे हैं,
3: नहीं कर रहा है कोई भी, गौरव भाई इसको कोई कंडम नहीं कर रहा है।
2: कौन उसको सही ठहरा रहा है? लेट मी ब्रिंग इन जयनंद दहादरा। जय, लीगली द कोर्ट हैज सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट, सरतन से जुदा इज नॉट अ रिलीजियस स्लोगन, एंड व्हेन इट कम्स टू इंडिया, एंड दिस इज माय क्वेश्चन, वी आर अ ट्रूली सेक्युलर कंट्री, वन, slogans like Sartan Se Juda, completely unacceptable. But Maulana Saab's fear is, while that is condemned, and rightly so, Jai Shri Ram ka nara laga ke, people are killing Muslims, in as he puts it. How do you read that?
4: But first and foremost, right at the outset, I respectfully but very vehemently disagree with Maulana Ji. He's absolutely okay. Wrong. For him to compare a religious invocation, which is what Jai Shri Ram is, to compare that to Sartan Se Juda, I mean, I don't know what sort of, you know, interpretation he's suggesting. But the meaning of the two phrases is completely different. One is a pure invocation, religious invocation. The other is basically saying that somebody's head should be cut off. It asks for beheading. So one is incitement to violence, while the other is a very simple, in fact, in northern India, it is a greeting between people.
2: Yes.
4: It is an invocation to God. I don't know what this data is that he's citing to come up with this idea that, you know, Jai Shri Ram has led to violence. I disagree with him completely. And the other point, Gaurav, as you rightly said, the Honorable High Court has decided this purely as a question of law. This is not a Hindu versus Muslim debate at all. There's nothing to do with it. This is a person who is accused of inciting violence. And naturally, there is, in fact, Gaurav, nothing. There is no religious subtext to this phrase, Sar Tan Se Juda. It can be said by any person from any religion. But if any person uses that phrase, it amounts to an offense. This is a criminal offense. You're trying to incite violence against the state. And the third point, it absolutely challenges the sovereignty and rule of law in a country like India. How can you allow a mob to go rampaging, marauding, you know, crying this slogan saying, I'm sorry, no citizen in this country has the right to take the law in their own hand. And while I agree with Maulana Ji, he's right that, you know, revered religious figures should never be blasphemed or, you know, abused or, you know, said bad things about. I agree with him. But at the same time, we are not a theocracy, Gaurav. We are a rule of law country. And we have a criminal justice system. File a complaint, go to the police, fight it out in court and give that person punishment. But you can't go around giving punishment to people.
2: ये बात बिल्कुल तय है कि भारत एक प्रजातंत्र है, एक धर्मनिरपेक्ष प्रजातंत्र है और एक धर्मनिरपेक्ष प्रजातंत्र में एक भीड़ ऐसे निकल नहीं सकती कि आपने किसी का अपमान कर दिया तो हम सरतन से जुदा करेंगे. अगर किसी ने वो गलती की है, वो दुस्साहस किया है, तो आप केवल पुलिस में जाके एफआईआर दर्ज कर सकते हैं और पुलिस छानबीन करेगी और अदालत सजा देगी, भीड़ सजा नहीं देगी. आप इस बात को पूरी तरह से मानते हैं कि भारत पाकिस्तान नहीं बन सकता?
3: सर, भारत पाकिस्तान बन ही नहीं सकता, ये कोई कहने वाली बात है ही नहीं.
2: नहीं, कहना पड़ रहा है. बड़े दुर्भाग्य के साथ, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कुछ लोग ये साजिश कर रहे हैं.
3: नहीं नहीं, गलत कह रहे हैं आप. आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं. जब मैंने कहा कि सर तन से जुदा का इस्लाम में कोई महत्व नहीं है, कोई सबूत नहीं है,
2: वो जो कर रहे हैं और जो कह रहे हैं उनको ये कहने की जरूरत है कि वो भैया ये एक्सेप्टेबल नहीं है.
3: सर, मुझे बोलने तो दीजिए, मुझे बोलने तो दीजिए. हम बोलते हैं, क्यों नहीं बोलते हैं? हमने तो 2012 में बाकायदा रामलीला मैदान में इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ, पाकिस्तानी आतंकवाद के खिलाफ फतवा जारी किया. हमने कहा हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते. तो आप इससे ज्यादा क्या चाहते हैं मुसलमान से? मुसलमान और इस्लाम, देखिए, जबरदस्ती किसी पर कोई चीज थोपना इसको एक्सेप्ट करता ही नहीं है. दूसरी बात,
2: नहीं तो क्या थोपा गया? नहीं, क्या थोपा गया? कानून तो मानेंगे ना, कानून तो सबके लिए बराबर है.
3: वंदे मातरम थोपा जा रहा है हमारे ऊपर.
2: आप अपनी माँ की वंदना करने में हिचकिचाते हैं, इसका मतलब
3: सुन लीजिए.
2: नहीं, वंदे मातरम थोपा जा रहा है का क्या मतलब है? लेट मी गेट जयनंद देहादरा टू गिव यू अ लीगल पर्सपेक्टिव. वंदे मातरम थोपा जा रहा है, आप कह रहे हैं.
3: दिक्कत ये है कि वकील साहब की तरह मुझे बोलने नहीं दे रहे. मैं ये कह रहा हूँ, इस्लामिक आस्था
2: थोपा जा रहा है आपने कहा.
3: इस्लामिक आस्था ये है कि हम अल्लाह के अलावा मैसेंजर ऑफ गॉड, अपनी वो माँ जिससे हम पैदा हुए, इनकी भी इबादत नहीं करते सिवाय अल्लाह के. हम नहीं करते किसी की इबादत, हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसकी वंदना करते हैं. हम अपनी माँ की जिसने 9 महीने पेट में रखा उसकी भी पूजा और इबादत नहीं करते. तो हम धरती की पूजा कैसे कर लेंगे? हम कैसे मान लेंगे अपनी धरती को माँ और कैसे उसकी पूजा कर? ये मेरी आस्था है और मेरे देश का संविधान मुझे इस बात की इजाजत देता है कि जो चीज आपकी आस्था के विरुद्ध है आप उसको ना माने. ये मेरे देश का संविधान कहता है. मुझे सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में और 1985 में इस बात को बाकायदा कहा कि किसी पर ये चीज थोपी नहीं जा सकती. इवन कोर्ट ने तो ये भी कहा कि अगर राष्ट्रगान के
2: सर, लिए देश प्रेम वैसे दिल से निकलता सर, है उसको थोपने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन देखिए आपने कहा, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा था इसीलिए मैंने नहीं कहा और आप कहते रहे, आपने जो कहा फेयर इनफ, ये आपकी सोच हो सकती है, बट जय यू वांट टू रिस्पोंड टू हिम ऑन मेरिट दैट वंदे मातरम इज बीइंग फोर्स्ड ऑन देम।
3: 10 सेकंड तो दीजिए मुझे, 10 सेकंड तो दीजिए।
2: अच्छा लीजिए 10 सेकंड लीजिए सर।
3: सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा 1985 में 2016 में ये कहा कि अगर राष्ट्रगान के लिए कोई खड़ा नहीं होता है तो उसको देशद्रोही का केस नहीं बन सकता, उसके ऊपर आप उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते, राष्ट्रगान के लिए कहा बाकायदा। राष्ट्रगीत तो उसके बाद की बात है, ये अलग बात है कि पार्लियामेंट में बराबर लाया गया उसको अभी, तो ये हमारे ऊपर दाढ़ी टोपी पकड़ के हमें कहा जाता है वंदे मातरम बोलो, जय श्री राम के नारे लगाओ। कितने हादसे मैं आपको गिनवाऊं, रेल के अंदर, शहरों के अंदर, गांव देहात के अंदर पकड़ के बोला जाता है हमसे कि जय श्री राम के नारे लगाओ।
2: सर राष्ट्रगीत के लिए अगर खड़े होना आपके किसी के मन से नहीं निकलता तो ये तो एक बड़ी विचित्र सी बात लगती
3: है। नहीं देखिए,
2: मतलब भारत में रहते हैं, भारतवासी हैं, और मतलब ये भारतीयता अगर आपके हृदय में नहीं है तो बड़ी विचित्र बात है। लेकिन चलिए जयानंद देहादराय आपको उत्तर देना चाहते हैं।
3: संविधान कहता आप चैलेंज कर रहे हैं मेरी आस्था को।
2: मैं चैलेंज क्या कर रहा हूँ, मैं तो बस प्रश्न पूछ रहा हूँ।
3: आप कह रहे हैं, आप मैं कह रहे तो मन से नहीं निकलता। अरे भाई नहीं
2: मैं
3: करते,
2: पूछ रहा हूँ,
3: मेरी आस्था है ये नहीं करते हम, तो आप क्यों कह रहे हैं कि मन से नहीं निकलता।
2: जयानंद देहादराय आपको उत्तर देना चाहते हैं, गो अहेड जय।
3: हम कर ही नहीं सकते।
5: गौरव, मैं बड़ी विनम्रता से, बड़ी विनम्रता से मैं मौलाना जी को कहना चाहता हूँ कि मैं इनकी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। बड़े रिस्पेक्टफुली और विनम्रता से मैं आपको ये बात कह रहा हूँ, और मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ कि मेरे कई मित्र हैं जो मुसलमान हैं, जिनको कोई प्रॉब्लम, कोई आपत्ति नहीं है कि अपने देश के लिए अगर वो प्रेम दिखाना चाहते हैं तो वो या वंदे मातरम या जो हमारा नेशनल एंथम है उनको उसमें गाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट मेरा एक डिस्कशन हुआ था किसी के साथ, उन्होंने मुझे बताया था कि इस्लाम में ये कहीं भी प्रोहिबिटेड नहीं है कि जिस देश में आप रहते हैं उस देश का जो राष्ट्रगान है आप उसको बिल्कुल आप अपने दिल से उसको आप गा सकते हैं, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। खैर वो रही एक बात, एक दूसरी बात, बट जो मेन मुद्दा और जो मेन पॉइंट है जिसके लिए आज हम डिबेट कर रहे हैं वो केवल इसी बात पे है कि आप दो अलग अलग फ्रेजेस को आप कंपेयर नहीं कर सकते। एक जैसे जय श्री राम है वैसी अल्लाह अकबर है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा कि ये कहना कि सर तन से जुदा ये एक्सेप्टेबल है क्योंकि मैं आपको लगता है कि जय श्री राम के साथ कुछ वायलेंट इंसिडेंट्स हुए, ये गलत है। मैं आपको बड़े विनम्रता से कहूंगा ये आप मत कहिए, ये बिल्कुल सही नहीं है। एक एक चीज अपनी जगह पे
3: बोला एक्सेप्टेबल,
5: और ये कहना कि नहीं ये अलाउड हो जाना चाहिए क्योंकि जय श्री राम के साथ कुछ लोगों ने कुछ गड़बड़ की, मैं ये आपकी बात मैं मान नहीं सकता हूँ प्लीज। ये कोई ना इसमें कोई स्टैटिस्टिक्स है ना कोई फैक्ट्स है इसको सपोर्ट करने के लिए।
3: जवाब देने दीजिए,
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल जवाब दीजिए मौलाना साहब।
5: बात हित में गई थी, मैं आपको सपोर्ट करता हूँ मौलाना जी, सुनिए एक मिनट, मैंने आपको आपकी बात मैंने काटी नहीं मौलाना जी, बड़े विनम्रता से आपको कहता हूँ, मैंने आपसे आपके आपके साथ अग्री किया मैंने कि आपने जो बात कही वो बिल्कुल सही कही थी कि भाई सर तन से जुदा कोई भी रिलीजन के साथ आप उसको नहीं एसोसिएट कर सकते। मैं तो कह रहा हूं ये बात आपकी, आपके हित में बोल रहा हूं, तो इसमें क्या दिक्कत हो सकती है? कोई भी व्यक्ति ये बात अगर बोले तो हमको कहना चाहिए कि बिल्कुल गलत है, बात इतनी सी है। हम पाकिस्तान नहीं है कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ नहीं चलता, हम इंडिया है, सेक्युलर डेमोक्रेसी है।
2: मतलब वहां तो जो सरतन से जुदा कर कहता है या जो किसी की हत्या कर देता है, गवर्नर की भी हत्या कर देता है वहां पर, तो उस पर पुष्प वर्षा की जाती है, वहां गुलाब उस पर डाले जाते हैं। हम ऐसी परिस्थिति भारत में उत्पन्न नहीं होने देना चाहते। तो आप मौलाना साहब ये मानते हैं ये जो मौलाना तौकीर रजा ने कहा या किया आपकी दृष्टि में भी वो गलत है, गैर कानूनी है, इट्स इलीगल एंड एब्सोल्युटली इनकरेक्ट व्हाट ही सेड एंड डिड।
3: देखिए एक चीज समझ लीजिएगा गौरव भाई, वकील साहब बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं मैं मानता हूं, और ये समझेंगे मेरी बात को। इस्लाम हिंदुस्तान में भी वही है, पाकिस्तान में भी वही है। अगर मैं यहां बैठकर ये कह रहा हूं कि सरतन से जुदा इस्लाम का नारा नहीं है तो पाकिस्तान में भी अगर कोई कर रहा है तो गलत कर रहा है, इस्लाम सब जगह एक है। दूसरी बात, अभी वकील साहब ने कहा कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं वो कहते हैं इस्लाम में ऐसा कुछ है ही नहीं। इस्लाम का जो सबसे पहला कलमा, जो हमारी बुनियाद है आस्था की, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो ये कहता है कि सिवाय अल्लाह के हम किसी की इबादत नहीं कर सकते, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये हमारी बुनियाद है। जो इस पर यकीन नहीं रखता वो मुसलमान हो ही नहीं सकता, और जो ये कह रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है तो वो समझो उसके ईमान में कमजोरी है, वो उसने आपको मिसगाइड किया है, या फिर वो सियासी आदमी होगा जो किसी पार्टी से फायदा उठाना चाहता होगा, ये कहकर जी मैं तो कह सकता हूँ इस्लाम नहीं कहता इस बात को।
2: खैर आज की डिबेट वो नहीं है, आज की डिबेट बहुत सीमित, सर तन से जुदा इज अनएक्सेप्टेबल सन, दैट्स कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल मौलाना साहब, आप डाइग्रेस कर रहे हैं
5: जी, उसी पर रहिए मौलाना जी। मौलाना जी बहुत जल्दी
3: सर तन से जुदा पर ही आ रहा हूं, सुनिए सुनिए
5: मौलाना जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपसे। आपने सुप्रीम कोर्ट की बात की, मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ, आप मेरी भी बात सुन लीजिए प्लीज। सुप्रीम कोर्ट ने मल्टीपल जजमेंट्स में ना एक टेस्ट दी है, उसको कहते हैं रिलीजियस एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस, ठीक है जी। तो उसमें ये कहीं पे भी नहीं लिखा है जो इंटरप्रिटेशन आप ले रहे हैं, और मैं आपका मैं बार बार कहता हूँ बड़े रिस्पेक्टफुली मैं आपसे डिसएग्री करता हूँ,
3: गलत कह रहे हो, मैं आपसे चैलेंज करता हूँ,
5: नहीं गलत नहीं कह रहे हैं,
3: मैं चैलेंज करता हूँ,
2: अरे सुन तो लीजिए
3: आपके वकील,
2: आप होंगे सुन तो लीजिए मौलाना साहब,
3: मैं चैलेंज करता हूँ जो मेरी
2: चैलेंज कर लीजिए लेकिन सुन तो लीजिए,
3: जो ईमान की बुनियाद है आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट मानता नहीं उसको, कैसे हो?
2: नहीं, नहीं, नहीं, उन्होंने एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस की बात की जो क्या धर्म के लिए आवश्यक है, आप सुन तो लीजिए उनकी बात, अब आप सुनना ही नहीं चाहते
3: सर, मैं सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से वो बात सुन ही नहीं सकता,
2: आप सुनना ही नहीं चाहते,
3: आस्था है जो मेरी असल ईमान की
2: सर, आप देश के कानून को तो मानेंगे, आपकी आस्था देश के कानून से ऊपर तो नहीं हो जाएगी, भारत में कानून से ही चलेगा, पर आप जय
5: आस्था से डिसएग्री नहीं कर रहा हूँ,
2: आपकी आस्था से वो डिसएग्री नहीं कर रहे हैं,
3: ये कह ही नहीं सकता कि ला इलाहा इल्लल्लाह,
2: मैं आप वो डिबेट नहीं आज की, अब आप इसको किसी और दिशा में ले जा रहे हैं,
3: नहीं नहीं ले जा रहा हूँ, नहीं ले जा,
5: मैं आपका आदर करता हूँ, आपकी आस्था का भी बहुत आदर करता हूँ मौलाना जी, मेरी बात तो आप सुनिए, मैं केवल इतना कह रहा हूँ कि जैसे आपकी आपने स्वयं एक इंटरप्रिटेशन दी है जो आपने कहा था, मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि उस इंटरप्रिटेशन के भी तहत यदि आप अपने देश के प्रति प्रेम जताना चाहें और दिखाना चाहें तो ऐसा नहीं,
2: फिर भी नहीं सुन रहे, नहीं होल्ड ऑन, जस्ट गेट द मौलाना फेडर डाउन फॉर अ मोमेंट, लेट जय एटलीस्ट कंप्लीट हिज पॉइंट, आप उनका पॉइंट ही नहीं होने देना चाह रहे, अब ऐसे क्यों आप घबरा रहे हैं, बोलने तो दीजिए उनको
5: मौलाना जी,
2: अरे अगर वो गलत बोल रहे हैं तो बोलिए, वो गलत बोल रहे हैं उनको बोलने तो दीजिए, आप तो उनको बोलने नहीं देना चाह रहे,
5: मैं आपको बस इस चीज से वाकिफ कराना चाह रहा हूँ कि जो टेस्ट है एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस की, उसमें जैसे आपने एक इंटरप्रिटेशन दी है कि वो जो फ्रेज है जो पहला कलमा है उसके तहत आप कुछ कह नहीं, मतलब किसी और चीज के प्रति आप आदर नहीं दिखा सकते, मैं आपसे डिसएग्री कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि ये किया जा सकता है, बस इतना ही मैं आपसे कहने,
2: अगर कोई आपसे अग्री करे या डिसएग्री करे किसी भी मुद्दे पर, अगर डिसएग्रीमेंट भी है तो आप अदालत जाएंगे किसी भी मुद्दे पर, यही बात। हाँ बोलिए बोलिए मौलाना साहब,
3: वकील साहब ने, वकील साहब ने एक बात और गलत कह दी, आदर करना अलग चीज है, आस्था बिल्कुल अलग चीज है, हम
5: तो मैंने आदर की ही
2: सर, आप राष्ट्रगान के लिए खड़े नहीं होना चाहिए, अगर राष्ट्रगान के लिए खड़े होना वो आस्था थोड़ी है, वो तो आदर है,
3: मेरी भी तो सुन लो भाई साहब, हम राष्ट्रगीत का सम्मान करते हैं
2: तो खड़े तो होंगे ना उसके लिए,
5: बस इतनी सी बात है, बस यही बात,
3: खड़े होंगे बिल्कुल खड़े होंगे, लेकिन उसको गा नहीं सकते, खड़े होंगे उसके लिए, आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, आदर अलग
2: चीज है, आस्था अलग चीज है। द लास्ट 30 सेकंड्स आई हैव ऑन दिस पार्ट ऑफ द शो जय, हाउ सिग्निफिकेंट इज द हाई कोर्ट ऑब्जर्वेशन दैट अ स्लोगन दैट प्रिस्क्राइब्स पनिशमेंट आउटसाइड द लॉ including death should invite the strongest possible criminal action and sections of the law, point one and point two. Is it now time for the country to move towards one nation, one law for all?
5: Yes, absolutely, Gaurav. And I think what the Honorable High Court has done is nothing special, nothing extraordinary. They've just upheld the law. And I quite agree with you. I think the time has come that we do need a uniform civil code. It will, in fact, improve the sense of unity and national integration amongst various communities. What can be problematic with that? So that is, of course, on the civil side. But in terms of criminal law, in any case, we have a uniform code. It applies to me, you, Maulana ji, all of us equally. And what the High Court has done, I salute the Honorable High Court. I think it's an absolutely legally sound decision. Any citizen, regardless of which religion they belong to, if they incite violence, most certainly, the High Court is going to take note of that. The courts are going to take note of that, and the person is going to be punished. So this is 100% correct, Gaurav.
2: So, Maulana Sahab, jo aakhri 30 second hai, jo bhi is tarah ke narebazi kare, sartan se juda ki baat kare, उसके खिलाफ सबसे कड़े कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए कि अगर कुछ गलत होता है तो क्रिमिनल लॉ सुप्रीम है इस देश में।
3: बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। और तमाम रिलीजन के लोग जो इस तरह के नारे लगाकर लोगों में नफरत, खौफ, दहशत फैलाते हैं, उनके खिलाफ कड़े से कड़ा कानून, मैं तो कहता हूं ऐसे लोगों को फांसी दे देनी चाहिए।
2: वो तो कानून निर्धारित करेगा आजीवन कारावास, बिकॉज इफ समबडी लूजेस हिज लाइफ देयर आर ओनली टू पनिशमेंट्स, आइदर अ लाइफ इन प्रिजन और डेथ बाय हैंगिंग, द यू नो दैट इज द ओनली पनिशमेंट इन क्रिमिनल लॉ फॉर ऑल इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। बट इज इट ऑल्सो टाइम टू गेट यूनिफॉर्म सिविल कोड नाउ इन आर कंट्री? बट दैट्स अ डिबेट फॉर अनदर टाइम एंड वी शैल हैव इट, वन नेशन वन काइंड ऑफ लॉज फॉर ऑल सिटीजंस। Barring, of course, certain tribes and certain special sections, but that's again a debate for another time. That is all that I have for you on India First this evening. I want to thank Maulana Sajid Rashidi, as always, and Jayanand Dehadrai for joining me here on India First. A quick break. News and updates continue on India Today. Stay with us.

0: अब ये जो नाराज फूफा जी है वो चिल्लाएंगे कि ट्रक वालों का क्या होगा, ट्रक कहां जाएंगे, जिन्होंने ट्रक खरीदा है उनका क्या होगा। अब फूफा जी को काम मिल गया, फ्रेट कॉरिडोर के साथ साथ अब भारत में रेल वहां भी पहुंच रही है जहां इतने दशकों तक नहीं पहुंची थी। पहले की सरकार में बजट में एक दो ट्रेनों की घोषणा होती थी और उसके भी साल भर ढोल पीटे जाते थे, जबकि आज देश में साल भर एक के बाद एक नई ट्रेनें चलाई जा रही है।
1: The Congress keeps the heat on. The party held protests over the purification ceremony held by a right-wing group at the Haldwani Ramlila ground after Mallikarjun Kharge gave a speech there. The Congress took out a march to the Chief Minister's residence in Dehradun on Monday. They demanded the withdrawal of the FIR filed against Rahul Gandhi, who had sought an FIR against the outfit that had held the Shuddhikaran Yagna.
2: Shuddhikaran ke naam par ye logon ko bhej rahe hain. ये सब इनकी विचारधारा, जो जहरीली विचारधारा फैलाने का प्रयास है इनका, नफरत की विचारधारा, उसके तहत ये सारा कुछ एक सोची समझी चाल चल रही है।
1: The BJP held its own protest against the Congress. They accused their rivals of dividing society on the basis of caste. Chief Minister Pushkar Dhami rejected the Congress charges of caste discrimination.
3: जो हल्द्वानी का प्रकरण था, उस प्रकरण में हमने पहले ही कहा कि किसी की जाति को, माननीय खड़गे जी की जाति हो या किसी अन्य व्यक्ति की जाति से संबंधित कोई भी वहां पर शुद्धिकरण हवन नहीं किया गया।
1: The Congress has taken up the purification row in a big way. The controversy comes just months ahead of the assembly elections in Uttarakhand and Uttar Pradesh, where the Dalit community is a sizable vote bank. Bureau Report, India Today.

0: होकर जो है नारे।
1: आई कंग्रेचुलेट देम जी, जो जज्बा जो हिम्मत जो उन्होंने एकता दिखाई है, सरकार ने अंग्रेजों वाली पॉलिसी लागू करी पाड़ो और राज करो, मगर वो बच गए हैं। जैसे स्टैंडिंग ओवेशन दिया था इस चीफ मिनिस्टर को, जिसने मुलाजिम वर्ग की पुरानी पेंशन, कच्चे को पक्के करना, उनके डीए पते देने, उस वक्त जब ये स्वॉन इन हुए थे इनको स्टैंडिंग ओवेशन दिया था। आज उसी तरीके से उसी बैल्कनी में खड़े होके भगवंत मान की केजरीवाल की मुर्दाबाद करी। और आज जो पंजाब के हालात बने वो स्पष्ट है कि पंजाब अरविंद केजरीवाल के रिमोट कंट्रोल से नहीं चल सकता। यहाँ पे कोलैप्स है ऑफ लॉ एंड ऑर्डर और बेसिक पुलिसिंग इज ऑल्सो कोलैप्स्ड, एंड दिस इज अ एग ऑन द फेस ऑफ द कच्चा डीजीपी जो कहता था मैं नशा खत्म कर दूंगा। नशा बकवाई आपकी सरकार और आपकी पुलिस रही।
2: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.
3: Oh, sorry!

0: This is a road under construction in Prayagraj. It is a part of the Ram Van Gaman Path, a 210-kilometer project to connect Ayodhya to Chitrakoot. But even before its completion, the road has started breaking apart in the Nawabganj area of Prayagraj.
1: 1 kilometer bhi road ye sahi kahin bhi nahi bani hui. हर आधे किलोमीटर एक किलोमीटर कहीं रोड फट गई, कहीं डिवाइडर टूट गया है. हमारे यहाँ तो ये रोड कम से कम 10 फीट से ज्यादा गड्ढा हो गया है. रोड से आए दिन माटी कटती रहती है, बारिश में सारी माटी बह जा रही है. ये इसी रोड फटने की वजह से कई जगह एक्सीडेंट हो गए. एक जो जगह गाड़ी पलटी, कई लोगों की जान चली गई, लेकिन इस पे ना तो कोई कार्रवाई होती है ना कोई एक्शन होता है.
2: ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है. हम ये चाहते हैं ये जो ठेकेदार बनवाया हो उसको पूरी तरह से सजा मिले.
1: आगे का पुल का जो है जहाँ काम लगा हुआ है एकदम बेकार हो चुका है. आप पूरी रोड फट गई है, भ्रष्टाचार बहुत है.
0: The contractor started repair work after videos showing the damage went viral on social media.
3: पुल नहीं सटका है, जो हमारी गैप स्लैप होती है वो सेटल करके मिट्टी बढ़ने की वजह से. एक्चुअली होता क्या, यहाँ कुछ पानी रुका, ड्रेनेज का प्रॉब्लम था, पानी रुक गया, इसके वजह से मिट्टी सेटल हुई तो हमारी अप्रोच स्लैब दब गई है. इसलिए हम लोगों ने एक्सपर्ट बुला रखे हैं और इसका रेक्टिफिकेशन जल्दी कर दिया जाएगा.
0: यूपी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य प्लेड डाउन द होल एपिसोड.
4: बनेगी तो धसेगी तो बनेगी, ये तो एक नॉर्मल है. अगर बरसात इतनी होगी तो सड़क क्या, बड़े बड़े पुल, अभी नेपाल में इतनी बड़ी बाढ़ आई, पुल बह के चले गए, वो अलग बात है. लेकिन कहीं कोई गुणवत्ता खराब होगी तो उसकी जांच करा के जो दोषी होंगे कार्रवाई करेंगे, लेकिन अगर कोई सड़क धसी है तो उसको सुधार करेंगे.
0: The government has allocated 4,400 crore rupees for the construction of the Ram Van Gaman Path. The cracks in the road in Prayagraj are a wake-up call for the government. With Pankaj Srivastav, Bureau Report, India Today.
5: Wake-up call. The question is, will someone wake up? Think about it. I want to leave you with my image of the day. It's an interesting one. Where do you usually park your car? In the basement, outside your house, or in the colony parking lot? Well, one man in Gopalganj has found a rather unusual parking spot, his terrace. That's right, a viral video shows a brand new Scorpio Classic being lifted onto the roof of a house using a crane. The reason? Its owner Manoj Yadav had reportedly gone abroad, wanted to make sure his newly bought car stayed safe from theft. Ah, there are different ways to protect your car. You don't try it, though. It is risky. Car on the terrace. I've got to leave you there. Thanks for watching. Stay well, stay safe. Good night, Shubh Ratri, Jai, Namaskar. That story happens only in India. Bye for now.

2006 में एक विशेष कंपनी बनाई गई इस काम करने के लिए, और फिर 2014 तक फाइलें ही यहां से वहां होती रही, फाइलें टेबल पे यात्रा कर रही थी। और दुर्भाग्य देखिए, इन फाइलों को भी कोई डेडिकेटेड कॉरिडोर नसीब नहीं हुआ, फाइल को भी नहीं नसीब हुआ। फाइलें अटकती थी, लटकती थी, भटकती थी। जरा मेरे नौजवान सुन लीजिए, याद रखिए, 7-8 वर्ष में 1 किलोमीटर फ्रेट कॉरिडोर का पर भी काम पूरा नहीं हो पाया था। अगर उनके हिसाब से देश चलाते तो पता नहीं आपके बाद 3-4 पीढ़ियां आती तो भी नहीं होता। भारत के लॉजिस्टिक इकोसिस्टम को ट्रांसफॉर्म करने वाले प्रोजेक्ट की ये हालत करके रखी थी। आपके पास से जो लेसन लेके मैं दिल्ली पहुंचा था, हमने वहां पहुंचते ही इसको गति देने का काम प्रारंभ कर दिया। 2800 किलोमीटर के कॉरिडोर का काम आज पूरा करके दिखाया है।

0: यहाँ पर देखो सेकंड फ्लोर ये जो है
1: फुल अवेलेबल है।
2: ये नाम क्या है?
3: ये पीछे वाला फेज है कि सामने वाला?
0: ये पीछे वाला फेज है, तीन फेज है इसके।
3: और अब दो बिल्डिंग्स के बीच में क्रैक्स आ
0: गए। हाँ, और नाउ वी वांट आवर सिक्योरिटी बैक। ये लोग सिक्योरिटी देने से मना कर रहे हैं। 16,000 रेंट था मेरा, 16,000 सिक्योरिटी, 3,000 से 4,000 मेंटेनेंस लेते हैं, लाइट का बिल अलग है। अपार्ट चलो लाइट का बिल ले रहे 14 रुपए यूनिट, डेली का कॉमन एरिया का 5 रुपए चार्जेस अलग लेते हैं। बच्चा अगर एक बार आ रहा है तो उसे 40,000 से 45,000 रुपए चाहिए एक बार में शिफ्ट होने के लिए। 50-60 जिससे जितना बनता है वो उतना लूटते हैं।
4: शिफ्ट होने से पहले हमसे पैसे ले जाते हैं, बिल्डिंग में पैर रखने से पहले कि हमें पैसे दो तब हमें रखेंगे। हम छोड़ रहे हैं, 2 दिन हो गए बिना बिल्डिंग के, हमारी सिक्योरिटी कहाँ जाएंगे?
3: और अभी आप लोगों ने जब खाली किया है, आपने ओनर को बोला होगा कि हमें हमारी सिक्योरिटी वापस कर दो? कुछ
4: बोला, बाद में जिक्र करेंगे इस चीज का। इसके घर वालों को डायरेक्टली
5: बोला कि नहीं मिलेगा,
3: नहीं दे रहे हैं।
5: नहीं नहीं नहीं मिलेगा। मैंने भैया ने बोला उसको बहुत वो करके कि यार दो वो लेकिन नहीं मिलेगा। और मैंने तो इस महीने का रेंट भी भरा है तो वो भी मुझे चाहिए।
0: इस महीने का भी रेंट भर दिया, सिक्योरिटी भी जमा है। मतलब अगर ये 15 दे रही तो उसने 45,000 से 50,000 दे दिया और इस महीने का भी रेंट दे दिया है।
6: And the situation in Delhi's Christian Colony, where several DU students live, is no better. The streets are congested. Here is a report by my colleague Harshit from the ground.
7: दिल्ली यूनिवर्सिटी पटेल चेस्ट के पास की क्रिश्चियन कॉलोनी में हम इस वक्त मौजूद हैं और आप देखिए यहाँ पर लगभग सभी घरों में जो स्टूडेंट हैं वो रहते हैं। यहाँ पर पीजी बड़े पैमाने पर चलता है और अगर मैं इस इलाके की बात करूँ तो बेहद कंजेस्टेड ये इलाका है। कहीं 4 फीट की कहीं 5 फीट की गलियां, पतली पतली गलियां। और आप मेरे ठीक ऊपर यहाँ पे देख सकते होंगे ये जो तारों का जाल बना हुआ है, इसको छूते हुए भी एक डर सा लग रहा है कि कहीं इसमें कुछ करंट ना हो या फिर कोई हादसा ना हो जाए। लेकिन इसकी हाइट जो है वो भी 5 फीट के आसपास होगी। यहाँ से तारों का जाल है वो खतरनाक है। यहाँ पर आप देखिए यहाँ पतली पतली जो गलियां हैं उसी में स्टूडेंट्स रहते हैं। 6x6 के कमरे में यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो रहने को मजबूर हैं। कई 100 किलोमीटर दूर से यहाँ पर आकर के जो स्टूडेंट्स हैं वो पीजी में रहते हैं, रूम किराए पर लेकर के रहते हैं और बेहद कंजेस्टेड ये पूरा पटेल चेस्ट के आसपास का जो एरिया है वो है। और यहाँ सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में जो स्टूडेंट हैं वो इन्हीं पतली पतली गलियों में जो घर बने हुए हैं उसमें 6x6 के कमरे हैं, छोटे छोटे से कमरों में वो एक एक दो दो स्टूडेंट जो हैं वो यहाँ पर गुजर बसर कर रहे हैं। और जिस तरीके का सत्य निकेतन में हादसा हुआ, अगर उसी तरीके का कोई हादसा यहाँ पर होता है तो ना तो दमकल की गाड़ी, ना एम्बुलेंस और ना ही कोई राहत बचाओ यहाँ पर जो विभाग है वो पहुंच पाएगा। और साथ ही साथ यहाँ के जो लोग हैं वो भी बाहर कैसे निकलेंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तो जांच होनी चाहिए। बच्चे जो कई 100 किलोमीटर से यहाँ पर आकर के रह रहे हैं उनकी सुरक्षा को लेकर के ये एक बड़ा सवाल है।
6: And some more news coming in. No end to politics over Vande Mataram. Abdullah's play full Vande Mataram. Congress fumes. Congress tells Abdullah Singh adopted version. Full Vande Mataram hurts pluralist ethos. Uphold India's secular character. This is what the Congress has told Abdullah. Meanwhile, BJP's big attack on Congress over Vande Mataram insult. BJP says Congress is anti-national. In fact, the BJP has called Congress the new Muslim League. Congress is isolated on Vande Mataram. This is what the BJP has said while attacking the Congress party after Abdullah's play full Vande Mataram at the International Film Festival in Jammu and Kashmir, after which the Congress told Abdullah's to sing the adopted version. My colleague Rahul Gautam is now joining us with more details on this. Rahul, were the Abdullah's just adhering to the official protocol or was this a political message as well?
8: No, that now there is now a law which actually mandates that one needs to sing all the 6 stanzas of Vande Mataram. This is something which on which Congress Party has already taken a stand that they're going to sing only 2 stanzas of Vande Mataram, as they've been saying that this was something which was agreed upon by our freedom fighters. And in that same spirit, although we all know that how in all these state ceremonies, in all these state events, it is mandatory to sing all the 6 stanzas. But the Congress is insisting that all its allies also must respect this fact that Congress has taken a stand on this. In fact, Mr. K.C. Venugopal, who is General Secretary of the organization, has put out a tweet urging all the alliance partners to take the similar position that Congress Party has already taken on this matter. Remember, a huge controversy ensued when, if we remember, the BJP

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: में एक विशेष कंपनी बनाई गई इस काम करने के लिए, और फिर 2014 तक फाइलें ही यहां से वहां होती रही, फाइलें टेबल पे यात्रा कर रही थी। और दुर्भाग्य देखिए, इन फाइलों को भी कोई डेडिकेटेड कॉरिडोर नसीब नहीं हुआ, फाइल को भी नहीं नसीब हुआ। फाइलें अटकती थी, लटकती थी, भटकती थी। जरा मेरे नौजवान सुन लीजिए, याद रखिए, 7-8 वर्ष में 1 किलोमीटर फ्रेट कॉरिडोर का पर भी काम पूरा नहीं हो पाया था। अगर उनके हिसाब से देश चलाते तो पता नहीं आपके बाद 3-4 पीढ़ियां आती तो भी नहीं होता। भारत के लॉजिस्टिक इकोसिस्टम को ट्रांसफॉर्म करने वाले प्रोजेक्ट की ये हालत करके रखी थी। आपके पास से जो लेसन लेके मैं दिल्ली पहुंचा था, हमने वहां पहुंचते ही इसको गति देने का काम प्रारंभ कर दिया। 2800 किलोमीटर के कॉरिडोर का काम आज पूरा करके दिखाया।

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: अब ये जो नाराज फूफा जी है वो चिल्लाएंगे कि ट्रक वालों का क्या होगा, ट्रक कहां जाएंगे, जिन्होंने ट्रक खरीदा है उनका क्या होगा। अब फूफा जी को काम मिल गया, फ्रेट कॉरिडोर के साथ साथ अब भारत में रेल वहां भी पहुंच रही है जहां इतने दशकों तक नहीं पहुंची थी। पहले की सरकार में बजट में एक दो ट्रेनों की घोषणा होती थी और उसके भी साल भर ढोल पीटे जाते थे, जबकि आज देश में साल भर एक के बाद एक नई ट्रेनें चलाई जा रही है।
2: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: होकर जो है नारे।
1: आई कंग्रेचुलेट देम जी, जो जज्बा जो हिम्मत जो उन्होंने एकता दिखाई है। सरकार ने अंग्रेजों वाली पॉलिसी लागू करी, पाड़ो और राज करो, मगर वो बच गए हैं। जैसे स्टैंडिंग ओवेशन दिया था इस चीफ मिनिस्टर को, जिसने मुलाजिम वर्ग की पुरानी पेंशन, कच्चे को पक्के करना, उनके डीए पते देने, उस वक्त जब ये स्वॉन इन हुए थे इनको स्टैंडिंग ओवेशन दिया था। आज उसी तरीके से उसी बैल्कनी में खड़े होके भगवंत मान की, केजरीवाल की मुर्दाबाद करी। और आज जो पंजाब के हालात बने वो स्पष्ट है कि पंजाब अरविंद केजरीवाल के रिमोट कंट्रोल से नहीं चल सकता। यहाँ पे कोलैप्स है ऑफ लॉ एंड ऑर्डर और बेसिक पुलिसिंग इज ऑल्सो कोलैप्स्ड, एंड दिस इज अ एग ऑन द फेस ऑफ द कच्चा डीजीपी, जो कहता था मैं नशा खत्म कर दूंगा। नशा बकवाई आपकी सरकार और आपकी पुलिस रही।

2006 में एक विशेष कंपनी बनाई गई इस काम करने के लिए, और फिर 2014 तक फाइलें ही यहां से वहां होती रही, फाइलें टेबल पे यात्रा कर रही थी। और दुर्भाग्य देखिए, इन फाइलों को भी कोई डेडिकेटेड कॉरिडोर नसीब नहीं हुआ, फाइल को भी नहीं नसीब हुआ। फाइलें अटकती थी, लटकती थी, भटकती थी। जरा मेरे नौजवान सुन लीजिए, ये याद रखिए, 7-8 वर्ष में 1 किलोमीटर फ्रेट कॉरिडोर का पर भी काम पूरा नहीं हो पाया था। अगर उनके हिसाब से देश चलाते तो पता नहीं आपके बाद 3-4 पीढ़ियां आती तो भी नहीं होता। भारत के लॉजिस्टिक इकोसिस्टम को ट्रांसफॉर्म करने वाले प्रोजेक्ट की ये हालत करके रखी थी। आपके पास से जो लेसन लेके मैं दिल्ली पहुंचा था, हमने वहां पहुंचते ही इसको गति देने का काम प्रारंभ कर दिया। 2800 किलोमीटर के कॉरिडोर का काम आज पूरा करके दिखाया।

0: मास्क भी मैंडेटरी हो जाएगा. ऐसी बहुत सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस हम देख रहे हैं कि प्रपोजल्स में आए हैं. अब कितना इसमें एग्जीक्यूशन में लेके जाएंगे वो हमें देखना पड़ेगा कि फाइनल जो रेगुलेशन जो रूल बुक होएगा पीजीज के लिए वो क्या क्या उसमें इंक्लूडेड रहेगा.
1: देखिए अभी फिलहाल सरकार की तरफ से ये पॉलिसी का ड्राफ्ट जो है वो सामने आया है. जल्दी इसकी पॉलिसी पूरी जो है वो सामने आएगी. सबसे बड़ी बात ये है कि जितने भी दिल्ली के अंदर पीजी चलते हैं वो किसी प्रकार की एनओसी नहीं लेते हैं. अपने घर को एमसीबी के कन्वर्जन चार्ज जमा कराते हैं और उसको पीजी जो है वो कमर्शियल यूज के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं. लेकिन उसमें फैसिलिटीज के नाम पर कुछ नहीं होता है. यही वजह है जिसको लेकर के सरकार की तरफ से अब नियम कायदे कानून जो है वो बनाए जाएंगे. साफ तौर पर इसमें दिल्ली पुलिस, इसके अलावा अगर बात की जाए एमसीडी से, आपको एनओसी लेना होगा. हर विभाग से आपको एनओसी लेना होगा क्योंकि शक्ति निकेतन में जो हादसा हुआ उसमें ये बात सामने आई थी कि पुलिस के पास जानकारी नहीं होती है, एमसीडी के पास जानकारी नहीं होती है. और ऐसे में सबकी जिम्मेदारी जो है वो तय होगी. अगर इस तरीके से आपको पीजी चलाना है तो उसके कोई नियम होंगे. उसमें फायर सेफ्टी के लिए आपको जो है वो नियम लगाने पड़ेंगे. इसके अलावा फायर एग्जिट लगाना पड़ेगा, तभी आपको फायर की तरफ से एनओसी मिलेगा. और ऐसे में दिल्ली में कई सारे एरियाज है जहाँ पर लोग अपने घरों को कमर्शियल में कन्वर्ट करते हैं और पीजी जो है वो रन करते हैं. इसके अलावा गवर्नमेंट का जो पोर्टल होगा उस पर आपको पूरी लिस्ट जो है वो जारी करनी पड़ेगी. इसके अलावा किराया क्या है, सुविधा क्या क्या है, ये तमाम चीजें पोर्टल पर, गवर्नमेंट के पोर्टल पर अवेलेबल होगी. उसके आधार पर आप अपने पीजी का रजिस्ट्रेशन जो है वो करा पाएंगे. किराए का जो मनमानी होगी वो नहीं करा सकते. पीजी खाली करना या छोड़ने के लिए 30 दिन का नोटिस देना अनिवार्य होगा जो ऑनर है. क्योंकि आज भी हमने देखा है कि कई इलाके ऐसे हैं जहां पर पीजी मालिक जो है वो महज 2000 रुपए अगर उसको एक्स्ट्रा रेंट मिलता है तो वो बच्चों को तुरंत खाली करने का आदेश देता है. तो यहाँ पर सरकार की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि 30 दिन का कम से कम नोटिस पीरियड जो है वो हर बच्चे को जो है वो दिया जाए. और अगर बच्चों को खाली करना है तो वो मालिक को नोटिस पीरियड देगा कि वो 30 दिन के अंदर अंदर मकान जो है वो खाली कर देगा. यानी जो मनमाने ढंग से पीजी चल रहे थे, जो बच्चे दिल्ली से नहीं बल्कि बाहर से पढ़ने के लिए आते हैं उनको परेशानी होती थी इस तरीके से पीजी को ले रहने के लिए लोगों को सड़कों पर सोना पड़ जाता था. ऐसे में ये परेशानी ना हो, दूसरों के घर जाना पड़े रात को बच्चों को, तो ऐसे में सरकार की तरफ से पूरी तैयारी है. सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य होगा कॉलेज
0: में,
1: यानी जो कॉलेज के आसपास है उन कॉलेज और उन कोचिंग सेंटर में जहां वो पढ़ने के लिए आपसे चाहे वो आईएएस आईपीएससी करके, उनकी भी जिम्मेदारी तय होगी कि भैया कि आप लोग जब इस तरीके से पीजी में बच्चे रह रहे हैं उनको आप पढ़ा रहे हैं तो उनकी भी एक जिम्मेदारी बनती है. उसकी भी जिम्मेदारी तय करेगी सरकार.
0: जी सुशांत, हमें ये सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. This is, you can understand, you can get an idea of the kind of regulations that is being proposed and that shall be in another few days' times be imposed by the Delhi government on all of these PG operators and owners. At this given point, there are more breaking news coming into this very story. Let's quickly take a look. As we speak now, these are live visuals we are getting that we will just take you to. It begins as a crackdown on Delhi's unsafe buildings. Now, over the past 2 days, we've seen how this crackdown has been imposed by the Delhi government, especially, of course, in the area where the collapse has taken place, given that that area in itself was a student community area itself. It was student heavy in terms of residents availing it because of its proximity to the south campus of the Delhi University. Now, if we take a look at the adjacent houses, the adjacent buildings to the one that's collapsed, the demolition of these two buildings have now begun. The hammers being used by the MCD officials to, in fact, break it down. Because remember, yesterday itself, there was notice that had been, in fact, issued that all of those buildings that have a 5-story or more than what the regulation and the rules mention, if there are additional stories that are illegally, that have illegally been added and are being run for whatever purpose it is, they will be broken down. So the adjacent houses as well, we see they are now facing demolition. The work has begun. These are the live visuals we are bringing to you of the MCD workers beginning to hammer down those very walls. The big point here would be to take a look while these are, this is a big wake-up call with this collapse that's come in. Of course, we do see this action now taking place. Some of the questions

0: एक्टिव सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: EBU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।
3: अब ये जो नाराज फूफा जी है वो चिल्लाएंगे कि ट्रक वालों का क्या होगा, ट्रक कहां जाएंगे, जिन्होंने ट्रक खरीदा है उनका क्या होगा। अब फूफा जी को काम मिल गया, फ्रेट कॉरिडोर के साथ साथ अब भारत में रेल वहां भी पहुंच रही है जहां इतने दशकों तक नहीं पहुंची थी। पहले की सरकार में बजट में एक दो ट्रेनों की घोषणा होती थी और उसके भी साल भर

0: Now we will begin the bulletin with our focus on the Manipuri musician who's been murdered. That very case that we have been tracking, the FIR in that very case as we speak has now been accessed. The Manipuri musician, remember, was beaten to death in Delhi. The FIR filed on the son's complaint would come into, in fact, lodge the complaint. It come out to say and report that there were 4 to 5 boys that attacked his father. The son in the FIR has revealed that he saw the attackers fleeing from the very spot after having beaten his father. The FIR also reveals that Vikram stopped some of the boys from drinking. Victim had received threats earlier, and the FIR says that the victim had attacked by staff nearby Dhaba. Now, the police could not record the victim's statements. However, doctor had declared Vikram unfit to give a statement. Now, we can see the son saying that he can identify all of the father's killers. Remember, already 8 of them have been arrested at this given point as we speak. Now, this is the latest update that we're bringing to you into the very case as we have been following it. Arvind Ojha is, in fact, joining us on the broadcast with more details on the same. Arvind, very good morning to you. Sabse pehle, agar hum is hadse ki baat kare, to jo beta hai Vikram ke, उन्होंने सबसे पहले आके उसी दिन कंप्लेंट दर्ज कराया था, उसी के बेसिस पे ये एफआईआर अब रजिस्टर किया गया है. एफआईआर में काफी सारी डिटेल्स जो अक्यूज्ड है उनके बारे में सामने आ रही है. अब अरेस्ट काफी सारे हो चुके हैं, पर उसके बावजूद एफआईआर में नई और क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है इस अटैक के बारे में?
1: देखिए, ये इंडिया टुडे ने एफआईआर एक्सेस किया है. जो म्यूजिशियन थे विक्रम, रिटायर्ड म्यूजिशियन जिनका मर्डर हुआ, उस मामले में उनके बेटे ने एफआईआर रजिस्टर्ड कराई है. और एफआईआर में जो खुलासा ये किया है बेटे ने कि जो नीचे ढाबा था उसमें कुछ लोग शराब पीते थे और विक्रम ने उनको पहले भी शराब पीने के लिए मना किया था और वो धमकाते थे. और उस रात 6 सितंबर की जो रात 11:30 बजे शोर मचाने को लेकर ही नीचे ढाबे पर विक्रम ने टोका था, जिसके बाद कुछ लड़के वो घर के ऊपर चढ़े और उन्होंने विक्रम को बुरी तरह से मारा, अधमरा कर दिया, जिसके बाद फिर जो विक्रम है उनको अस्पताल ले जाया गया और फिर इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. तो जो एल्कोहल का एंगल है, नीचे ढाबा है और ढाबे पर जो लोग थे वो कई दिनों से शराब पीते थे, जिसकी वजह से वहां पर काफी शोरगुल होता था, अब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता था और विक्रम जो थे वो इसी बात का विरोध लगातार कर रहे थे. और एफआईआर में इसी बात का खुलासा उनके बेटे ने किया है कि किस तरीके से ढाबे में पहले भी शराब लोग पीते थे, जिसको लेकर विक्रम ने मना किया था तो उनको धमकी दी जाती थी और रात भी जब शोर की आवाज आई तो विक्रम ने सिर्फ शांत रहने के लिए कहा था, लेकिन लोगों का गुस्सा इतना बढ़ा कि वो घर पर चढ़े और उन्होंने विक्रम सिंह की पीट पीट के हत्या कर दी. जी
0: अरविंद, हमें ये सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. व्यूअर्स, दिस इज व्हाट वी आर लर्निंग एज अरविंद हैज आल्सो कम आउट टू bring us the details of the FIR and what exactly was the complaint that the son has come out to lodge against these attackers. And it began much before than the actual incident took place. Let's take you through those developments, all that's happened in this unfortunate and horrifying incident at the same time in the national capital. It's Vikram Singh's murder outside his Delhi home has now become a flashpoint over safety, justice and politics. Now, viewers, quickly, before we, in fact, continue with this very story, the BJP president, Nitin Nabin, is currently addressing a press conference. Listen in to what he has to say.
2: जारी रखा है. माननीय प्रधानमंत्री जी के इस पूरे कार्यकाल को हम इस रूप में देख सकते हैं कि पहले दिन से जो ध्येय वाक्य और ध्येय शब्द उनके मन में रहे, उनको हमेशा उन्होंने संकल्प में और सिद्धि तक पहुंचाने में सफल रहे. अगर हम कहते हैं कि 25 करोड़ गरीब परिवार, कहीं ना कहीं वो उनके नेतृत्व और उनकी सोच का परिणाम रहा. 80 करोड़ लोगों को राशन उपलब्ध कराना हो, 100 करोड़ लोगों से अधिक को सामाजिक सुरक्षा योजना से जोड़ना हो, 12 करोड़ शौचालय से लोगों को और एक जीवन में बदलाव के रूप में देख सकते हैं, और हम कह सकते हैं कि 200 करोड़ कोविड का फ्री वैक्सीन और 4 करोड़ से अधिक गरीबों के लिए आवास बनाना, कहीं ना कहीं ये सामान्य घटना नहीं है, ये सामान्य परिवर्तन नहीं है, ये कहीं ना कहीं ये परिवर्तन जो आम लोगों के जीवन में लाने का उनका प्रयास रहा है, उनके जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास रहा है, एक बहुत बड़ा योगदान एक नेतृत्वकर्ता के रूप में उन्होंने दिया है। उनका सफर एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में जो प्रारंभ हुआ और आज देश के प्रधान सेवक के रूप में जो उन्होंने काम को आगे बढ़ाया, ये केवल उनके स्पष्ट विजन, उनके दृढ़ संकल्प और मैं कह सकता हूं कि सामाजिक जीवन में लगातार गुणात्मक कैसे परिवर्तन आए, कैसे उनके जीवन में बदलाव आए, इसका प्रयास उन्होंने किया। एक समय जब उन्होंने देश का नेतृत्व संभाला तो पूरे देश में एक निराशा, एक अंधकार का माहौल था। पॉलिसी पैरालिसिस हम कह सकते हैं, हमारे इकोनॉमी को फ्रेजाइल फाइव के रूप में देखा जाता था, लेकिन आज भारत दुनिया का तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में सामने आ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो भारत की अलग पहचान बनी, भारत की साख सम्मान में जो लगातार वृद्धि हुई, ये कहीं ना कहीं इसका परिणाम आज देश विश्व भर में भारत की प्रभुत्व को, भारत के सम्मान को जिस प्रकार से उनके नेतृत्व में बढ़ा है, ये हम सबने देखा है। 37 देशों से अधिक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो सर्वोच्च सम्मान दिया गया, ये कहीं ना कहीं ये सम्मान 140 करोड़ देशवासियों को उनके पुरुषार्थ का सम्मान है। आज जब हम उनके इस कार्यकाल की चर्चा कर रहे हैं तो एक समय यह भी था कि इस देश में आतंकवाद के रूप में सामान्य जीवन को हमेशा अभिशाप के रूप में मिलता रहा। आम आदमी को आतंकवाद का डर, भय उनके मनों में हमेशा मस्तिष्क में रहता था, लेकिन उनके नेतृत्व में जहां हमने बाहरी और आंतरिक दोनों ही सुरक्षाओं पे देश के लोगों को सुरक्षित भी किया और देश के लोगों का मनोबल भी बढ़ाया, आज हरेक भारतीय अपने आप को सुरक्षित और सम्मान के रूप में आगे बढ़ा रहा है। हमने नक्सलवाद को उसकी जड़ों से समाप्त करने का काम किया और 200 से अधिक जिलों को जो प्रभावित जिले थे आज नक्सल मुक्त जिले के रूप में पूरी तरह से आम जनजीवन के जीवन की तरह आगे बढ़ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम कह सकते हैं कि केवल विकास ही नहीं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की भी जड़ों को मजबूत किया गया। आज अगर हम भव्य राम मंदिर की बात करते हैं, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात करते हैं, सोमनाथ की बात करते हैं, महाकाल कॉरिडोर की बात करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि देश के सांस्कृतिक धरोहर को एक पूरी तरह से सृजित और विकसित करने में उन्होंने पहल किया। अगर आज हम देश के युवाओं की बात करते हैं तो जहां एक ओर देश का युवा निराशा के वातावरण में था, उसको आशा और उम्मीद के वातावरण में लाकर खड़ा करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 के बाद से किया। और हम कह सकते हैं कि स्टार्टअप के माध्यम से, यूनिकॉर्न के माध्यम से, जहां भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप नेशन बना और स्टार्टअप और यूनिकॉर्न में हमारे युवा आगे आकर केवल जॉब सीकर्स नहीं, जॉब गिवर्स बनकर उभरे, और हम साथ में यह भी कह सकते हैं कि आज भारत खेलो इंडिया के माध्यम से, फिट इंडिया के माध्यम से भारत का युवा हर क्षेत्र में प्रतिनिधित्व कर रहा है। कल तक बात होती थी वुमेन डेवलपमेंट की, माननीय प्रधानमंत्री जी ने वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात को आगे लाया और आज बेटी बचाओ से लेकर बेटी पढ़ाओ से जो सफर का शुरुआत हुआ वो आज लखपति दीदी तक पहुंचा और हम कह सकते हैं कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से देश की महिलाओं को उसका अधिकार और नीति निर्धारण में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करने का प्रयास हमारा चल रहा है। इन सब के पीछे माननीय प्रधानमंत्री जी का सशक्त भाव सेवा का रहा है। गुजरात से जो सफर उन्होंने शुरू किया, नर्मदा बांध के माध्यम से गुजरात के लोगों को घर घर तक पानी पहुंचे, ज्योति ग्राम योजना के माध्यम से गांव गांव तक बिजली पहुंचे और वाइब्रेंट गुजरात के माध्यम से गुजरात
3: इन्वेस्टमेंट से लेकर निवेश के रूप में अलग सेक्टर से आगे बढ़े, पूरा एक विजन उन्होंने गुजरात के लोगों को दिया। और हम कह सकते हैं कि गुजरात का जो ग्रोथ रेट रहा वो अपने आप में सभी राज्यों के लिए एक कम्पिटिटिव मॉडल बना, और केवल गुजरात के शहरों को नहीं, गुजरात के गांवों को भी विकास करने का संकल्प को उन्होंने पूरा किया। हम जब आत्मनिर्भर भारत की कल्पना को माननीय प्रधानमंत्री जी ने आगे बढ़ाया, और उस आपदा की घड़ी में जब पूरा देश कोरोना के कालखंड में खड़ा था, तो उसमें उन्होंने आत्मनिर्भर भारत की कल्पना दी, वोकल फॉर लोकल की कल्पना दी, और कहीं ना कहीं पूरा देश उससे जुड़ा। आज इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ की बात करें, मैन पावर से मैन्युफैक्चरिंग पावर की बात करें, डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर की बात करें, कृषि विभाग से कृषि और किसान कल्याण विभाग की बात करें, स्पेस सेक्टर की बात करें। मैंने आज इन सेक्टरों की चर्चा इसलिए की क्योंकि जब आप उनके पूरे कार्यकाल को देखेंगे तो इन सेक्टर्स में किस प्रकार से उन्होंने ग्रोथ किया, किस प्रकार से देश को अग्रणी भूमिका में लाने का प्रयास किया, वो हम सबके सामने है। लेकिन उन्होंने केवल

देश को क्षेत्र और वर्ग में बांटने की बात हुई। उन्होंने ज्ञान के रूप में गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी के को समान अधिकार रखकर, उनकी सामने रखकर योजनाओं का निर्माण करने की बात कही। मैं मानता हूं ये ऐसी सोच थी जो हरेक भारतवासियों को जोड़ रहा है। आज जब एक समय था हमारी सीमाओं के गांव को लोग कहते थे कि हमारी सीमाओं में जो पढ़ने वाले गांव है वह अंतिम गांव है, उन्होंने उसकी परिभाषा को भी परिवर्तित किया, उन्होंने कहा वो हमारे प्रथम गांव है। तो कहीं ना कहीं ये जो सोच बदलाव की बात है, मैं मानता हूं कि ऐसे उनके पूरे कालखंड को हम जब देख रहे हैं तो केवल युगांतकारी निर्णय ही नहीं हुए, आम लोगों के जीवन में बदलाव ही नहीं हुआ, आम लोगों के जीवन के सोच में भी बदलाव आया है। और 25 साल के ये सशस्त्र सेवा और समर्पण के जो उनके कार्यकाल रहे हैं, जो उनके बेदाग जीवन, लगातार शासन दुनिया भर के लोकतंत्र के इतिहास को एक अलग परिभाषा के साथ सामने लाया है। मैं मानता हूं कि जन सेवा और समर्पण के इस संदेश को जन जन तक पहुंचाना भारतीय जनता पार्टी का दायित्व है। हमने अगले एक महीने में सेवा संकल्प अभियान का कार्यक्रम का निर्माण किया है और 17 सितंबर 2026 से 17 अक्टूबर 2026 तक हम पूरे एक महीने सेवा संकल्प अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। इसकी सबसे पहले कड़ी में 17 सितंबर को, जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, उस दिन को हर वर्ष हम लोग सेवा दिवस के रूप में मनाते हैं और पूरा कार्यक्रम हम सेवा पखवाड़ा के रूप में करते हैं। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी के जो पूरे जीवन को अगर हम देखेंगे तो जहां उन्होंने सेवा के भाव से समाज को जोड़ते हुए हर अंतिम व्यक्ति तक विकास की योजनाएं पहुंचे और उनको हम मुख्य धारा में कैसे लेके आए, इसका उन्होंने प्रयास किया। इसलिए उनके जन्मदिन को हम लोग सेवा दिवस के रूप में हर साल मनाते हैं और इस वर्ष भी इस रूप में ही मनाएंगे। विभिन्न कार्यक्रमों का जो आयोजन होगा उसमें पार्टी कार्यकर्ता जनमानस को साथ लेकर हम इन कार्यक्रमों को सफल करने का प्रयास करेंगे। प्रथम दिन 17 सितंबर को रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा, जो हर साल हम लोग करते हैं और इस साल भी हमारा मानना है कि रक्तदान महादान के रूप में हम इस कार्यक्रम की शुभारंभ करेंगे और हमारे युवा, हमारे समाज के हर वर्ग के लोग इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। उसी दिन 17 सितंबर को शाम में 7 बजे आशीर्वाद का दिया। इस पूरे कार्यक्रम का स्पष्ट उद्देश्य है कि पिछले 25 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो निष्ठावान जनसेवा की है उसके प्रति आभार व्यक्त हम जन आशीर्वाद सामूहिक प्रदर्शन के रूप में करेंगे। इस पूरे कार्यक्रम का जो उद्देश्य प्रत्येक परिवार, विशेष करके हमारे जितने लाभार्थी रहे हैं, उन सब के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी को आशीर्वाद स्वरूप ये दीप जलाए जाएंगे और ये दीप इस बात का प्रतीक होगा कि जहां एक ओर जनसेवा के प्रति उनके आभार व्यक्त करेगा, वहीं विकसित भारत 2047 के विकसित संकल्प को भी प्रदर्शित करेगा। 2 अक्टूबर को स्वच्छता अभियान हर साल हम लोग करते हैं, इस वर्ष भी पूरे इस कार्यक्रम में स्वच्छता अभियान को भी हम उसी रूप से करेंगे। इसके बाद मेरे सपनों का भारत चित्र सेवा के माध्यम से, जो पिछले सेवा और समर्पण के जो 25 वर्ष रहे हैं, इसमें विकसित भारत के कल्पना जैसे विषयों को लेते हुए हम लोग पूरे इस एक महीने के कार्यक्रम में 17 सितंबर से 7 अक्टूबर के बीच में सभी स्कूलों में चित्रकारी, ड्राइंग और भाषण प्रतियोगिता कराई जाएगी। इसमें उत्कृष्ट चित्रों को और भाषण प्रतियोगिता के विजेताओं को माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर और अन्य हमारे केंद्रीय मंत्री के स्तर पर उनका प्रमाण पत्र देने की योजना है। नमो सेवा अन कही कहानियां, माननीय प्रधानमंत्री जी के जो 25 साल के कार्यकाल रहे हैं इसमें कई के जीवन में बदलाव आया है और कई ऐसे योजनाएं रही हैं जिन योजनाओं का असर समाज के हर वर्ग को मिला है। उन योजनाओं को भावनात्मक रूप से संगीतपूर्ण नाटक और नुक्कड़ नाटक के रूप में प्रस्तुत करने की योजना है, जिसको हर गांव-गांव तक पहुंचाने का कार्यक्रम हम लोग आयोजित करेंगे। आंगन मिलन सेवा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा दीवियों का सम्मान हमेशा किया है और उसी विषय को देखते हुए हम लोगों ने भी आंगन मिलन सेवा का कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, जिसमें आंगन

0: बीमारी के अपने बच्चों उनकी माता से जुड़ी मोदी सरकार की पोषण स्वास्थ्य और महिला संबंधित योजनाओं की जानकारी उनके साथ साझा की जाएगी। साथ ही साथ उनके बीच में मनोरंजन की गतिविधि के अन्य कार्यक्रम हर आंगनबाड़ी केंद्र पर करने की योजना हम लोगों ने ली है। साथ ही साथ सेवा की कहानी विभिन्न योजनाओं से हमारे लोगों के जीवन में जो बदलाव आया है उन जीवन के जिनके जीवन में बदलाव आया है वो उनकी कहानियों को भी हम एक प्लेटफॉर्म देंगे जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से देश और दुनिया को हम बता पाएंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल से कितने लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में जो बदलाव आया है उसको ये कार्यक्रम सेवा की कहानी के माध्यम से हम लेके आएंगे। सेवा ज्योति कलश यात्रा विकसित भारत का संकल्प 7 अक्टूबर 2026 को जिस दिन हेड ऑफ द गवर्नमेंट के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी का जन सेवा और समर्पण के 25 साल पूरे होंगे उस दिन देश भर के सभी जिलों में सेवा ज्योति कलश यात्रा के माध्यम से हम कार्यक्रम करेंगे। इस कार्यक्रम में जहां 25 वर्षों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की जाएगी वहीं इस कार्यक्रम में विकसित भारत 2047 का संकल्प लिया जाएगा। इस पूरे कार्यक्रम में पदयात्रा बाइक रैली साइकिल रैली के माध्यम से हम सभी हरेक जिला के मुख्यालय पर जमा होंगे और वहां इस संकल्प को लेंगे। देश भर के सभी जिला मुख्यालयों के अतिरिक्त करीब 1000 स्थानों पर विकसित भारत का सामूहिक संकल्प लिया जाएगा। इसके साथ साथ युवा मोर्चा के माध्यम से एक अलग यात्रा का भी प्लानिंग हम लोग के बीच में है। इसमें दो यात्राएं निकलेंगी माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म स्थान वडनगर से आज के उनके जो कर्म भूमि है बनारस तो वडनगर से बनारस के बीच में सेवा यात्रा निकलेगी और उसी प्रकार से बनारस से वडनगर के लिए भी सेवा यात्रा निकलेगी। ये यात्रा 10 अलग अलग टोलियों में निकलेगी और ये पूरी यात्रा में का नेतृत्व हमारे युवा करेंगे। प्रत्येक टोली में 50 युवा साथी हमारे होंगे जो पूरे कार्यक्रम के रूट में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम को आयोजित करेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य जहां हटकेश्वर महादेव वडनगर में जो हमारे स्थान है वहां से काशी विश्वनाथ दोनों ही स्थानों पर जलाभिषेक करके ये कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य हमारे चौपाल में रहने वाले गांव में चौपाल में रहने वाले लोगों से संवाद करना आंगनबाड़ी केंद्रों के लोगों के साथ संवाद करना किसानों के साथ संवाद करना हमारे शहर के जो युवा क्लब्स होते हैं उनके साथ संवाद करना इस प्रकार के करीब 7-8 कार्यक्रम प्रत्येक दिन ये टोली करेगी और ये करीब 20 यात्राएं अलग अलग रूट से करीब 10 राज्यों से होकर गुजरेगी। इन सभी 10 राज्यों में अलग अलग कार्यक्रम की टोली बनाई गई है और इन सभी कार्यक्रमों को ये टोली अंजाम देगी। 20 दिनों की इस यात्रा में प्रत्येक दिन 5 से 7 कार्यक्रम करने की योजना है। मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देना जनता का फीडबैक लेना चौपाल के माध्यम से जनसंवाद और सरकार की विभिन्न योजनाओं की जो उपलब्धियां रही हैं उसकी भी चर्चा करने का कार्यक्रम इस यात्रा के माध्यम से होगा। साथ ही साथ सेवा मेरा योगदान माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा मानते हैं कि हर व्यक्ति को अपना योगदान इस देश के विकास में देना चाहिए और इसी के तहत सेवा मेरा योगदान कार्यक्रम हम लोगों ने लिया है। 17 सितंबर से 17 अक्टूबर के बीच में जन भागीदारी के माध्यम से 25 विभिन्न थीम पर उसके 25 अलग अलग विषय हैं उन विषयों पे हर व्यक्ति से आग्रह किया जाएगा कि उस सेवा मेरा योगदान में अपना समय श्रम दान के रूप में मन दान के रूप में दे। इस पूरे कार्यक्रम को सेवा मेरा योगदान कार्यक्रम को हम क्या परिवर्तन लाए हैं पहले क्या था और आज की स्थिति में हम क्या परिवर्तन ला पाए हैं इस तरह से हर व्यक्ति अपना श्रम दान कम से कम देगा और सभी लोगों से ये उम्मीद की जा रही है कि 25 मिनट का कम से कम श्रम दान वो दे। इसमें करीब 25 अलग अलग कार्यक्रम लिए गए हैं। हर व्यक्ति जो आम जनमानस से इसमें हम अपील करेंगे कि उनके भी योगदान से इस देश के विकास में योगदान मिले परिवर्तन आए इस दृष्टि से ये कार्यक्रम लिए गए हैं। इसमें समाज के जुड़े हुए विभिन्न विषयों को लिया गया है जिससे में वो अपने जुड़ाव के साथ काम कर सकते हैं। सेवा सेतु अभियान 17 सितंबर से 17 अक्टूबर के बीच में प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर शिविर कैंप आयोजित किए जाएंगे। विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं रही हैं उन योजनाओं के क्रियान्वयन को अंतिम रूप देने का, और हम मानते हैं कि जितनी भी लाभकारी योजनाएं हैं हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति तक वो योजनाएं पूरी तरह से पहुंचे, तो जितने भी हमारी योजनाओं के लाभार्थी अगर कुछ बचे हैं तो उनको हम ब्लॉक स्तर पे उसी दिन आवेदन लेकर समय सीमा के अंदर उन योजनाओं को उनको देने का काम करेंगे। साथ ही साथ इस शिविर में स्वास्थ्य शिविर भी और अन्य योजनाओं की जानकारी का भी कैंप लगाया जाएगा। सेवा के रंग राष्ट्र के संग देश के प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पे मानव समूह रंगोली के माध्यम से जन कल्याणकारी योजनाएं, राष्ट्रीय प्रतीक, विकसित भारत के संदेश, ये सब को प्रदर्शित करते हुए ये ह्यूमन रंगोली बनाने का प्रयास किया जा रहा है जिसमें विभिन्न प्रकार के कलाकार, महिला बहनें, हमारे स्वयं सहायता समूह की बहनें, विद्यार्थी और व्यापक स्तर पर जन भागीदारी के माध्यम से ये कार्यक्रम किया जाएगा। इस मानव समूह रंगोली को मुख्य रूप से जो सरकार की माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो विभिन्न
1: So viewers, right ahead of the Prime Minister's birthday later this month, we will be taking a look at the BJP having launched a Seva Sankalp Abhiyan, wherein they will be hosting a series of events each day of the week, wherein they will in some sort be bringing out the Prime Minister's lives as well as be providing services, different kinds of services to the people across the country. And this is what was in fact being laid out, the entire plan that they have come up with that's been laid out by the BJP President Nitin Nabin in this very address of his. On that note, we're slipping into a short break, but do stay tuned to India Today as we come back on the other side following up on all the top stories.
2: You are watching India Today. करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। ए यू
3: सोच बदलो और बैंक भी।

0: करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: सोच बदलो और बैंक भी।

0: मैं आपको दिखा दूं कि ये लक्ष्मी नगर का इलाका है, और अगर आप देखेंगे, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि आपको कैमरा अगर पैन करके दिखाएं तो किस तरीके से यहाँ पर आपको कई ऐसी बिल्डिंग नजर आएंगी जो कि इस बिल्डिंग से भी ज्यादा ऊंची आपको नजर आएंगी। सवाल ये है कि आखिरकार इन बिल्डिंगों पर एक्शन कब होगा। बेशक इस बिल्डिंग पर जिस पर हम मौजूद है, इस पर हाईकोर्ट का आदेश है। पूरी बिल्डिंग अनऑथराइज तरीके से बनाई गई थी, बिल्डिंग में किसी प्रकार का नक्शा नहीं था, लेकिन सवाल ये है कि जब इस तरीके की इस बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा था, 5 मंजिला इस बिल्डिंग को खड़ा कर दिया गया था, उस वक्त एमसीडी की टीमें जो है वो कहां थी, इस तरीके के निर्माण को आखिरकार क्यों होने दिया गया। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहां पर ये पूरा हिस्सा जो है वो डेमोलिशन कर दिया गया, और इसके बाद अब नीचे की फ्लोर पर डेमोलिशन किया जाएगा, छज्जे जो है वो डेमोलिशन किए जाएंगे ताकि इस बिल्डिंग का निर्माण जो है वो नहीं कर सके। हालांकि बिल्डिंग ओनर का ये आरोप है कि एमसीडी की टीम तो उन्होंने किसी प्रकार का कोई पैसा जो है वो नहीं दिया गया, इसकी वजह से उनके ऊपर एक्शन जो है वो लिया जा रहा है, एमसीडी का माफिया जो है वो काम करता है। लेकिन सवाल बार बार ये खड़ा होता है कि आखिरकार ये एक्शन तब क्यों होता है जब इस तरीके से पूरी बिल्डिंग का निर्माण कर दिया जाता है या कोई हादसा होता है, उससे पहले इस तरीके की बिल्डिंगों के निर्माण से पहले क्यों रोक नहीं लगाई जाती।
1: बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल यही है। सुशांत, मैं आपका शुक्रिया करना चाहूंगी सभी जानकारी के लिए। ऑल्सो शिवानी हु गॉट अस द लेटेस्ट डिटेल्स। मीनवाइल मोर अरेस्ट दैट आर हैपनिंग इन द दिल्ली पीजी ट्रेजेडी। पीजी ऑपरेटर सुधांशु एंड लेबर कॉन्ट्रैक्टर सनोज हु हैव बीन अरेस्टेड बाय द पुलिस, वाइल पीजी ऑपरेटर शुभम त्यागी रिमेन्स एट लार्ज। अ टोटल ऑफ 5 पीपल हु हैव बीन अरेस्टेड सो फार इन दिस केस, इंक्लूडिंग द बिल्डिंग ओनर हरिराम गुप्ता, हिज वाइफ उर्मिला गुप्ता एंड देयर सन महेश गुप्ता। The Delhi government and the MCD have sprung into action following the tragedy. The building adjacent to the collapsed structure, which was also found to be in a dilapidated condition, will also be demolished. Meanwhile, Chief Minister Rekha Gupta and the Delhi government, who have also announced a slew of curbs on PG operators. The measures include rent caps for all PGs, mandatory PG registration, area-wise rent bans, a maximum security deposit of 3 months' rent, mandatory CCTV cameras and night guards that are now necessary for PGs housing more than 15 students are the rules that have been laid down.
2: On Sunday in Satyaniketan, right next to South Campus of Delhi University, a PG came crashing down, killing 7 students who were living in that PG. Today, the adjacent building is being demolished by the MCD workers. Drillers are being used. The top floor of this Kanaklata PG is being hammered by the MCD workers. It's a planned, phased-wise demolition drive that's being carried out in Satyaniketan. You can see how the electric drillers are being used by these MCD workers to deal with the concrete structures, while for the walls, brick walls, hammers are being used, and the entire debris is being thrown on the area where that PG stood in, with 7 students of the Delhi University were killed in the building collapse. The bigger question today is that, does this mean that this particular action will be limited to this unsafe structure? I'll also request camera person Sachin to go a bit closer to this building to show you those two windows, the holes that you see in this Kanaklata PG. This was the passage of sorts between the both buildings, from where students or the residents of Kanaklata, who fearing for their life were rushing out of the building, heard the helpless cries from the adjacent building. Today, because this adjacent building has been now declared unsafe, the ground floor, you can see, has been completely, in a way, it's wrecked. The building stands today on support of iron beams and iron pillars, and it can collapse any time. And that is why the structure was declared unsafe by the civic body of the national capital, and hammers, the iron drills or the electric drills are working. And we are given to understand it will be a phased-wise demolition of this particular building to ensure the safety of residents nearby is not compromised. The civic body is acting against other PGs and buildings in violation of the MCD norms. Show cause notices are being issued, and the Delhi government has also planned to bring regulations to regulate the paying guest structure in the national capital, from the rent to security aspect. But students ask why the government and the administration woke up so late. With video journalist Sachin Chando, this is Amit Bhardwaj reporting for India Today from Delhi.

0: EU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।
3: Delhi is staring at a breathing crisis. We've talked about the problem. We've tried to look away, but not anymore. Because what if we told you, you can be part of the solution? India Today brings pollution ka solution.

अब ये जो नाराज फूफाजी है वो चिल्लाएंगे कि ट्रक वालों का क्या होगा, ट्रक कहाँ जाएंगे, जिन्होंने ट्रक खरीदा है उनका क्या होगा। अब फूफाजी को काम मिल गया, फ्रेट कॉरिडोर के साथ साथ अब भारत में रेल वहां भी पहुंच रही है जहां इतने दशकों तक नहीं पहुंची थी। पहले की सरकार में बजट में एक दो ट्रेनों की घोषणा होती थी और उसके भी साल भर ढोल पीटे जाते थे, जबकि आज देश में साल भर एक के बाद एक नई ट्रेनें चलाई जा रही है।

0: करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: सोच बदलो और बैंक भी।

0: करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: ए यू
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: Thank you for staying with India Today. You're watching Lunch Break. I'm Suvesha Samant. And well, the Vande Mataram row that has opened up a fresh fault line within the opposition alliance. The war of words between the BJP and the Congress is intensifying further. In the latest salvo, BJP chief Nitin Naveen has launched a fresh attack on the Congress, calling its mindset anti-national and accusing the party of disrespecting freedom fighters. He also said Vande Mataram will drive and lead the country's development. The Congress, meanwhile, has defended its position, saying that the two-stanza version was adopted to preserve unity and serve as a bridge between communities. The party has also urged against creating divisions between religions. The latest flashpoint emerged in Srinagar, where National Conference Chief Farooq Abdullah and Jammu and Kashmir Chief Minister Omar Abdullah stood through all the six stanzas of Vande Mataram when it was played at an event following the new guidelines on the national song. And Congress subsequently launched an attack on the two leaders over the episode.
1: मैं कांग्रेस को इसके लिए एनआरकी माइंडसेट मानता हूं, पूरी तरह से देश विरोधी मानसिकता मानता हूं, और देश के उन करोड़ों शहीदों को जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में उस वीर गान से अपने आप को जोड़ा और अपना बलिदान दिया, उनका अपमान मानता हूं, और मैं मानता हूं कि विकसित भारत का संकल्प भी इसी वंदे मातरम की गूंज से आगे बढ़ेगा।
2: वंदे मातरम को संपूर्ण रूप से गाने के संसद द्वारा पारित नियम के बावजूद कांग्रेस पार्टी ने आज केसी वेणुगोपाल जी के द्वारा जो बात कही है उससे एक बात बहुत साफ हो गई है कि इस समय संपूर्ण वंदे मातरम को गाने में कांग्रेस पार्टी के सहयोगी दलों को भी अब कोई आपत्ति नहीं है, मगर कांग्रेस इसके बावजूद यह आपत्ति कर रही है। अर्थात इससे एक विषय साफ हो गया है कि अब इसमें कोई किसी प्रकार का संदेह नहीं रह गया है कि कांग्रेस 21वीं सदी की मुस्लिम लीग बन गई है।
3: बहुत अच्छा है, वक्त पड़े बांका तो गधा को कहे काका, तो अच्छा है, ये पहले होना चाहिए। आज तक कश्मीर में जो राष्ट्र विरोधी गतिविधि हुई, लाखों जाने गई, इसके पीछे कौन थे? आज उनको समय में आ रहा है कि राष्ट्रवादी सरकार है, देश में राष्ट्रवादी भावना बढ़ रही है, हिंदुस्तान में रहना है, राज करना है, तो इसी के साथ चलना है।
4: ये सिर्फ याद स्मरण कराना होता है कि ये दो स्टैंजास का ऐतिहासिक महत्व क्या है और क्यों ये दो स्टैंजास हमारे देश के नायकों ने चुने थे। क्योंकि देश तब भी 1938 का जो दौर था उसमें भी बहुत जहर था सांप्रदायिकता का, और उस जहर को पाटने के लिए, खत्म करने के लिए एक सेतु बनाना, क्योंकि ये जो राष्ट्रीय गान राष्ट्रीय गीत है ये एक सेतु है, ये दीवार नहीं है दो समुदायों के बीच में, ये सेतु है जो हर समुदाय को जोड़ती है। आज भी माहौल वही है, तो आज हमारी चॉइस है, हमें चुनना है कि हमें दीवार चाहिए या सेतु चाहिए। हमें यह लगता है कि जितने भी लाइक माइंडेड लोग हैं, जो इस देश के धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखते हैं, जो पुल बनाने में विश्वास रखते हैं, दीवारें खड़ी करने में विश्वास नहीं रखते, उन्हें पुल ही बनाने चाहिए, पुल को मजबूत करना चाहिए, दीवारों को तोड़ना चाहिए।
5: मिस्टर केसी वेणुगोपाल्स प्रेजुडिस्ड रिमार्क्स अबाउट आवर नेशनल सॉन्ग Vande Mataram only echoes a Jinnah-like bigoted communal outlook that has plagued the Congress party and continues to plague the Congress party from Nehru to Rahul Gandhi. The Congress party now stands completely sidelined on Vande Mataram after being abandoned by its own allies. Despite Parliament's recent act, the Congress party continues to disrespect Vande Mataram by viciously opposing the singing of the original version of a national song.
0: And well, it is the Congress versus NC over Vande Mataram. The entire matter that is now escalating with the NC lashing out at Congress over Vande Mataram controversy. Allies locking horns against each other over the Vande Mataram controversy. Now, NC has responded to what the Congress said. The National Conference saying that a law has been enacted by the Parliament with due respect to Vande Mataram, and we all need to give it that respect. The National Conference also saying that the Congress must refrain from falling into the trap of the BJP, adding that Congress and BJP are unnecessarily creating a controversy over this matter. NC saying that we need to focus on the larger issues in the country like unemployment and economy. Earlier, Congress had slammed Chief Minister Omar Abdullah for playing out the entire version of Vande Mataram at the International Film Festival inauguration in Srinagar, and how both the leaders, Farooq Abdullah and Omar Abdullah, stood through the entire rendition. The Congress calling that out, saying that the full rendition should not be played out because it will affect communal harmony, and that is the very point that they have been stating. But NC now hitting out at the Congress over this very criticism, saying that the very fact that Vande Mataram has a law that has been enacted by the Parliament and all the parties, the entire nation must respect it. We all need to honour the national song, is what the NC has said. NC also adding that there are bigger issues in the country and the Congress should not fall into the trap of the BJP. Let's listen into more responses coming in from the national conference.
6: जब से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक पास हो गया पार्लियामेंट से, उस चीज़ का एहतराम कितना एहतराम होता है लॉ का. पार्लियामेंट के अंदर अब पास हुआ है, बीजेपी ने पास कराया कि वंदे मातरम के वक्त खड़े हो जाओ और उसका एहतराम करो. तो एहतराम कानून का है, कानून का किया जाता है. अब जब कानून का एहतराम हम करते हैं तो किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए. नंबर एक, बहुत से लोग बीजेपी के और कांग्रेस के अंदर, उनको पता ही नहीं है कि वंदे मातरम की जो लैंग्वेज है वो क्या है, मगर बहस करे जा रहे हैं. बीजेपी का एक फंडा रहा है कि वो जो इश्यूज हैं उनको डाइवर्ट करने के लिए ऐसे इश्यू देते हैं और कांग्रेस उसमें फंस जाती है.
0: And there you heard what the NC has said on this matter, as a clear word coming in that a law has been enacted by the Parliament with respect to Vande Mataram, and everyone needs to respect it. The other point that the NC makes, that there are bigger issues that the country is facing at this point, and there shouldn't be any digression from those issues, where the NC calling out the Congress to say that they must not fall into the trap of the BJP. So that's the response coming in from the National Conference over this entire controversy. Let me take this to my colleague Sunil G. Bhatt joining us on the broadcast. Sunil G., two very valid points being made by the National Congress. Will the Congress party now take its lessons and move on from this issue?
7: Well, absolutely, a massive political storm has erupted in Jammu and Kashmir over Vande Mataram. Remember, at the inauguration of the International Film Festival in Srinagar, there was full, rendition of Vande Mataram, and this has created problems for the Congress, because Congress expressed displeasure to LI National Conference. It said that that only three stanzas should have been sung, but now National Conference has hit back at the Congress party and has said that a law has been enacted by the Parliament and everybody must respect it. Vande Mataram is the national song and everyone must respect it. At the same time, National Conference has asked the Congress party to refrain from falling into the trap of the BJP. National Conference is saying that BJP wants to create a narrative and Congress party is falling into that trap. So the National Conference is saying that there are bigger issues in the country and the Congress party should focus on those issues rather than Vande Mataram, which is a national song. And there is a law that has been enacted by the Parliament. Everyone must respect it. Another National Conference leader has even uploaded a video on social media showing Karnataka Chief Minister D.K. Shivakumar also standing in respect for national song Vande Mataram during their Independence Day function. There was full, Vande Mataram, it was played, full Vande Mataram was played, all stanzas were sung at the Independence Day function in Bangalore. That's what National Conference is saying, and National Conference has accused the Congress party of creating an unnecessary controversy, and the National Conference has also asked Congress party to refrain from falling into the trap of the BJP.
0: And will the Congress really learn from this, given how their own allies are now cornering them, is something we wait and watch. Sunil G. Bhatt, I want to thank you for those details. on to more breaking news coming in. Congress versus Aam Aadmi Party over Punjab drug war that is escalating further, where Manish Sisodia is the very latest who's attacked Rahul Gandhi over Gulzar Singh's suicide. Manish Sisodia has said that Rahul Gandhi is politicizing the death of a laborer. Sisodia has said that politics over the video of a dying man is not something that the Congress must indulge in, asking Rahul Gandhi to apologize to Gulzar's son. Rahul Gandhi had said that Gulzar was harassed after questioning the minister, and Rahul Gandhi has demanded justice for deceased Gulzar. Rahul Gandhi had demanded action over the harassment that was leveled against Gulzar are the allegations that have surfaced. And in the very latest, Manish Sisodia has now responded to the Congress, saying, don't politicize the death of a laborer. Let me take this to my colleague Aseem Bassi joining us on the broadcast. Aseem, just a short while ago, we saw Bhagwant Mann posting that video where he said that a local was cornering a Congress leader. And now Manish Sisodia also taking on Rahul Gandhi, saying the very same.
8: Yes, definitely. Ever since Rahul Gandhi has tweeted in the morning, the Aam Aadmi Party is in a regular counter-attack mode, be it Bhagwant Mann, be it Arvind Kejriwal, be it Manish Sisodia, they all are tweeting and questioning Rahul Gandhi for his tweet, what he made on Punjab. Manish Sisodia has said that has questioned Rahul Gandhi, saying that you're playing politics over a dead body, you're playing politics over the statement of a dying person, and also said that the son of Gulzar Singh has categorically come forward and said that they are not under any pressure and they are satisfied with the police probe and the action has been taken by the police. So he said that Rahul Gandhi must watch that and must apologize from the son of Gulzar Singh regarding the accusation he has made. He also said that that Rahul Gandhi is and the Congress is one who appreciates people like Sajjan Kumar. So they say that now you're doing politics in Punjab. Punjab government has done a lot to eradicate drug and counter the drug menace in Punjab. But the Congress party is just busy doing politics. So ever since Rahul Gandhi has tweeted in the morning over the issue of Gulzar Singh suicide case and demanded the removal of Harpal Singh Cheema, Manish Sisodia, Bhagwant Mann and Kejriwal, they've come out hard on Rahul Gandhi. And amid all this suicide case, the entire political scenario is now between Aam Aadmi Party and Congress.
0: Oh yes, absolutely. I want to thank you for getting us those details. Yes, the death of Gulzar Singh, a resident of Punjab Sangrur, over drug menace in the state has snowballed into this massive political storm like you're witnessing. Congress and Aam Aadmi Party are now trading charges over the suicide case. Punjab Chief Minister Bhagwant Mann, who has also slammed the opposition over Gulzar Singh's death. Chief Minister Bhagwant Mann, who said that Congress leaders are engaging in dirty politics and that politics should not be played over dead bodies. Mann has also blamed the Akali Dal, BJP and Congress for the drug menace in the state. Chief Minister has also shared a video of locals confronting Congress leaders. In the video, the locals can be heard telling the Congress leaders not to engage in politics and asking them to leave. The death of Gulzar Singh snowballed into a major controversy, with the opposition coming down heavily on the Punjab government. Singh died by suicide after consuming poison, following allegations that local ruling party leaders pressurized him to apologize for questioning Punjab Finance Minister Harpal Singh Cheema over the alleged supply of chitta or synthetic drugs in his village. Lok Sabha LOP Rahul Gandhi, who's lashed out at the Aam Aadmi Party government in Punjab over the alleged suicide of that villager who had questioned the finance minister of Punjab, Harpal Singh Cheema, about the unabated supply of drugs. Gandhi demanded that Chief Minister Bhagwant Mann must immediately seek the minister's resignation and ensure an impartial investigation. Rahul Gandhi has highlighted that Cheema was not even named in the FIR that has been filed by the cops.
9: ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜੀ, ਕੱਲ ਚੀਮਾ ਆਇਆ ਸੀ ਸਾਡੇ, ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ ਮੈਂ, ਇਹ ਚੀਮਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜੀ।
10: ਕੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ?
9: ਮੈਂ ਚਿੱਟੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜੀ।
10: ਚਿੱਟੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਚਿੱਟਾ ਪੀਂਦਾ?
9: ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਪੀਂਦਾ।
11: ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜੀ, सरपंच और तीन लोग वहां के उसके घर गुलजार सिंह के घर गए कि तूने ये क्यों बोला। उसने फिर बोला कि मेरे घर में मेरा जो बकरियां मैं पालता था और जो मेरा सामान था वो बिक गया, नशे के कारण मेरा घर बर्बाद हो गया, तो चाहिए मैं लोगों के सामने रख रहा हूँ। तो उसने उनको बोला कि अभी अपनी बात जो कल बोली तुमने सभा में इसकी माफी मांगो, नहीं तो आप पे मोहनजीत की तरह जो मोहनजीत पे कार्रवाई हो ऐसी आपकी पुलिस माध्यम से आप पे कार्रवाई हो। और हमें ये भी पता चला है गाँव के लोगों से कि ये पंचायत के चार लोग तो जो चीमा के लोग हैं वो तो गए गए और साथ में उनके दो पुलिस मुलाजम गए और उनको डराया गया धमकाया गया।
12: अपने उन्हें चेहतिया ने उन बंदे नु तंग किया ते मजबूरन आत्महत्या करनी पई, ये तो माड़ी गल की हो सकती है। मैं तो कहना कि डाइंग डिकलेरेशन जड़ी हुंदी है ना वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइनस है कि हुण हरपाल चीमा ते जिन्ना बंदा कीता है उन्हां नू एफ आई आर दर्ज करके उन्हें सजा होनी चाहिए है, क्योंकि डाइंग डिकलेरेशन है, ये कोई दूजा गल नहीं हो सकती। आ जिहड़े चार जान के इन्हां नू झाड़ू वाले नू इन्ना हंकार है, ना बोलन दिंदे है, ना कोई अपनी आवाज फौन दिंदे है, आ सोचते हैं कि पुलिस साडे नाल है, पुलिस नाल असीं कोई धक्का कर दीए। आ जिहड़ी हालात बनी है लोकी आत्महत्या करे इन्हां दी नीतियां करके ही है।
13: संगरूर में गुलजार सिंह का सुसाइड केस अब तूल पकड़ता जा रहा है। आज भाजपा का 600 साइट्स पे विरोध प्रदर्शन है, हम मोहाली के जगह पे, और आप देख सकते हैं किस तरह से विरोध प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है। और बात करने की कोशिश करते हैं मंडल लेवल पर, आप ये बताइए आज बड़े पैमाने पे विरोध प्रदर्शन जगह जगह किया जा रहा है, राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है कांग्रेस पार्टी से, बाकी लोग भी बोल रहे हैं, अकाली दल भी बोल रहा है कि एक्शन होना चाहिए, आज किस तरह से आप लोग मांग कर रहे हैं?
14: देखो पंजाब नू रंगला बनाने दे नाम ते बनन वाली सरकार ने पहले ते पंजाब नू कंगला कीता और हुण ए सरकार ओ सोच दे नाल चल रही है कि जेड़ा बंदा भी इस सरकार नू प्रश्न पुछेगा उस बंदे नू इन्ना क प्रताड़ित कीता जावे कि साडे खिलाफ कोई दोबारा आवाज ना चक सके।
13: तो एक बड़े पैमाने पे हमने देखा है कि प्रोटेस्ट है, और आज आपको बता दें 600 साइट पे प्रोटेस्ट करने की बात है, और उसी बीच में बड़ा सवाल ये आ रहा है कि किस तरह से संगरूर सुसाइड केस शांत होने का मामला नहीं है, और विपक्षी पार्टी लगातार आम आदमी पार्टी पे सवालिया निशान उठा रहे हैं और बोल रहे हैं कि कानूनी कार्रवाई के तहत कार्रवाई होनी चाहिए हरपाल चीमा जो कि फाइनेंस मिनिस्टर उन पे।
0: With that, it's time for us to slip into a very short commercial break. On the other side, my colleague Anisha Mathur getting you the very latest. Do stay tuned to India Today.

0: करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: सोच बदलो और बैंक भी।

0: And our big story at this hour, more arrests in the Delhi PG tragedy. PG operator Sudhanshu and labor contractor Sanuj have been arrested by the police, while PG operator Shubham Tyagi remains at large. A total of 5 people have been arrested in the case so far, including building owner Hariram Gupta, his wife Urmila, and their son Mahesh. The Delhi government and the MCD have sprung into action following the tragedy. The building adjacent to the collapsed structure, which was also found to be in a dilapidated condition, will be demolished. Similar buildings will be demolished in Lakshmi Nagar, Pandav Nagar and other parts of the city. Meanwhile, Rekha Gupta government has also announced a slew of curbs on PG operators. The measures include rent caps for all PGs, mandatory PG registration, area-wise rent bans, a maximum security deposit of 3 months' rent, mandatory CCTV cameras and night guards for PGs housing more than 15 students.
1: On Sunday in Satyaniketan, right next to South Campus of Delhi University, a PG came crashing down, killing 7 students who were living in that PG. Today, the adjacent building is being demolished by the MCD workers. Drillers are being used. The top floor of this Kanaklata PG is being hammered by the MCD workers. It's a planned, phased-wise demolition drive that's being carried out in Satyaniketan. You can see how the electric drillers are being used by these MCD workers to deal with the concrete structures, while for the walls, brick walls, hammers are being used, and the entire debris is being thrown on the area where that PG stood in, with 7 students of the Delhi University were killed in the building collapse. The bigger question today is that, does this mean that this particular action will be limited to this unsafe structure? I'll also request camera person Sachin to go a bit closer to this building to show you those 2 windows, the holes that you see in this Kanaklata PG. This was the passage of sorts between the both buildings, from where students or the residents of Kanaklata, who fearing for their life were rushing out of the building, heard the helpless cries from the adjacent building today, because this adjacent building has been now declared unsafe. The ground floor, you can see, has been completely, in a way, it's wrecked. The building stands today on support of iron beams and iron pillars, and it can collapse any time. And that is why the structure was declared unsafe by the civic body of the national capital, and hammers, the iron drills or the electric drills are working. And we are given to understand it will be a phased-wise demolition of this particular building to ensure the safety of residents nearby is not compromised. The civic body is acting against other PGs and buildings in violation of the MCD norms. Show cause notices are being issued, and the Delhi government has also planned to bring regulations to regulate the paying guest structure in the national capital, from the rent to security aspect. But student ask why the government and the administration woke up so late. With video journalist Sachin Chando, this is Amit Bhardwaj reporting for India Today from Delhi.
0: The MCD is finally taking action against illegal structures and buildings in a dilapidated condition in Pandav Nagar, Lakshmi Nagar and Nehru Vihar. Here are some of the ground reports by my colleagues Shivani, Sushant and Harshit.
2: After the building collapse in Satyaniketan, now the Delhi government has started demolishing the buildings that are with irregularities. And right now I'm at Pandav Nagar, where one such building is now being demolished by the MCD. This is a residential building which was not allowed to have 5 floors, but after multiple notices, it still has the 5th floor, which is now being demolished by the MCD officials. And you can see the demolition drive has already started in this area. This is the Pandav Nagar in East Delhi. And we can see that there are MCD officials, there are police force who are at the site right now, and the demolition continues. I have with me the JE, Mr. Arvind. He says that he had already given certain warnings. Sir, yahan pe jo demolition drive chal raha hai, क्या इससे पहले नोटिस आप लोगों ने दिया
3: था? मैडम, सब सारे नोटिस दिए हुए हैं, फाइल लवी जी, सारे नोटिस दिए हुए हैं, इनको ऑर्डर ऑफ हमने पहले भी सीलिंग ऑर्डर भी पास किए हुए हैं, लेकिन इन्होंने हमने बार बार वार्निंग देने के बाद, वर्कस्टॉप देने के बाद भी इन्होंने काम बंद नहीं किया है
2: जी।
3: हमारा हम क्या है, फाइल प्रोसेस पूरा होने से पहले हम डिमोलिशन एक्शन नहीं ले सकते। हमने पहले भी उस पोर्शन में डिमोलिशन एक्शन लिया है, अब हम इस पूरे फ्लोर को हम डिमोलिश करेंगे।
2: देयर आर स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स नाउ फ्रॉम द दिल्ली गवर्नमेंट ऑन द इलीगल बिल्डिंग्स दैट एग्जिस्ट इन कंप्लीट दिल्ली, एंड दिस पर्टिकुलर बिल्डिंग इन पांडव नगर इज नाउ बीइंग डिमोलिश, एंड देयर आर मल्टीपल सच साइट्स अक्रॉस दिल्ली इंक्लूडिंग सत्यनिकेतन, मुखर्जी नगर, जनकपुरी एंड मल्टीपल अदर लोकेशंस विच आर नाउ नॉट ओनली बीइंग डिमोलिश बट देयर आर सर्टन बिल्डिंग्स दैट आर नाउ बीइंग सील्ड। बट द बिग क्वेश्चन इज दैट why this demolition drive and why this action always follows deaths of students or deaths of innocent civilians due to this civic apathy. This is Shivani Sharma with camera person Sanjeev Kumar for India Today from New Delhi.
4: राजधानी दिल्ली में एमपीडी का एक्शन पूरी दिल्ली में इस वक्त जो है वो देखने को मिल रहा है। सत्यनिकेतन के हादसे के बाद दिल्ली के अलग अलग इलाकों में, चाहे वो मुखर्जी नगर हो, लक्ष्मी नगर हो, गीता कॉलोनी हो, सत्यनिकेतन हो, वहां पर एमसीडी की जो टीमें हैं अवैध निर्माण के खिलाफ एक्शन लेती हुई नजर आ रही है। ये तस्वीर है लक्ष्मी नगर के इलाके की, जहां पर ये जो पूरी बिल्डिंग है वो अवैध रूप से बनाई गई थी, अनऑथराइज थी, हाईकोर्ट का आदेश था, बिल्डिंग का नक्शा भी पास हुआ था और इस बिल्डिंग को स्टील पार्किंग के साथ चार मंजिल जो है वो खड़ा कर दिया गया, जिसके बाद अब एमसीडी की जो टीम है वो हथौड़ों के जरिए पूरी बिल्डिंग को डेमोलिशन करने के लिए जो है वो पहुंची है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, एमसीडी की टीम, एमसीडी के जवान, दिल्ली पुलिस के तमाम अधिकारी भी जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं, जिसके जरिए दिल्ली के तमाम इलाकों के अंदर जो है वो इस वक्त डेमोलिशन का ड्राइव जो है वो किया जा रहा है। खुद दिल्ली की मुख्यमंत्री की तरफ से ये आदेश दिया गया था कि 5 मंजिल से ऊपर की जितनी भी इमारतें हैं जहाँ पर अवैध रूप से बिल्डिंगें बनी हैं, डेंजर बिल्डिंग है, उन सब पर एक्शन जो है वो लिया जाए, और वही एक्शन जो है वो इस वक्त राजधानी दिल्ली में जो है वो अलग अलग हिस्सों में जो है वो देखने को मिल रहा है।
5: देखिए, ये जो बिल्डिंग पिछले करीब 4 साल से झुकी हुई थी और यहाँ पर 2023 में नोटिस भी लगाया गया था, लेकिन उसके बाद जो अधिकारी हैं वो गहरी नींद में सोए हुए थे, इसमें जो लापरवाही बरती जा रही थी वो सामने उजागर करी और उसके बाद एक बड़ा असर देखने को मिला। आखिरकार जो नगर निगम की टीम है वो यहाँ पर पहुंची, अधिकारी यहाँ पर पहुंचे और अब इस बिल्डिंग पर डेमोलिशन की कार्रवाई की जा रही है। आप देख सकते हैं जो डेमोलिशन है वो यहाँ पर किया जा रहा है, ऊपर से सारे जो ग्रिल हैं वो हटा दिए गए हैं, नीचे मलवा इस बात की तस्दीक करता है कि यहाँ पर कल शाम को भी डेमोलिशन हुई और अभी भी जो डेमोलिशन की कार्रवाई है वो जारी है। बिल्डिंग इस कदर झुकी हुई है कि जब यहाँ पर जो तोड़ने के लिए टीम पहुंची, इस पर डेमोलिशन करने के लिए टीम पहुंची, तो पहले नीचे जैक लगाए गए जिससे जब डेमोलिशन किया जाए तो बिल्डिंग अचानक कहीं भरभरा कर ना गिर पड़े। अब फिलहाल जैक लगाया गया है और डेमोलिशन की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर जारी है।
0: Delhi's tryst with unsafe PGs continues. Students have been evacuated late night from PG. Cops have evacuated students from dangerous PG accommodations, including buildings with cracks. Delhi government finally swings into action and rescues students from a dilapidated PG in Chirag, Delhi, which has now been sealed. Rekha Sarkar swings into action following the Satyanaketan tragedy. The Delhi government has averted another major tragedy by evacuating students late at night from a PG accommodation that had become unsafe. This incident is from Chirag, Delhi, where students have been evacuated from the facility after large cracks appeared in this particular building. Sushant Mehra is joining me on this story for more. Sushant, take us through what exactly is happening. Where is this area? What is this area? Where is this incident taking place? And what is the government doing about the hundreds of other similar buildings in the city?
4: देखिए निशा, कल जिस तरीके से देर रात के वक्त चिराग दिल्ली की एक हॉस्टल के अंदर जहां पर तमाम बच्चे रह रहे थे उनको यहाँ से शिफ्ट कराया गया। दरअसल वो पूरी बिल्डिंग चिराग दिल्ली के अंदर उस बिल्डिंग में क्रैक्स थे और अनसेफ थी और यही वजह है कि दिल्ली सरकार के जो यूडी मिनिस्टर हैं उनके पास जब ये पूरी इन्फॉर्मेशन आई देर रात के वक्त, उन्होंने तमाम जो प्रशासन है उनको लगाया, तमाम बच्चों को वहाँ से निकाल करके अलग अलग कॉलेज के जो पीजीज हैं वहाँ पर शिफ्ट किया है। सीधे तौर पर देखा जाए तो सत्यनिकेतन हादसे के बाद रेखा गुप्ता सरकार जो है वो एक्शन में है। खुद दिल्ली सरकार के जो एजुकेशन
6: एजुकेशन मिनिस्टर है, उन्होंने चिराग दिल्ली इलाके के अंदर कई सारे बच्चों को जो है वो बाहर निकाला, पूरी बिल्डिंग अनसेफ थी और सीधे तौर पर हमला किया आम आदमी पार्टी पर, क्योंकि चिराग दिल्ली जो इलाका है वहां से आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज जो है वो मंत्री रहे हैं, उनके घर के पास ये पूरा हॉस्टल जो है वो चल रहा था। आशीष सूद जो कि एजुकेशन मिनिस्टर है, उन्होंने सीधे तौर पर इस पर हमला किया, उन्होंने कहा कि सौरभ भारद्वाज जो लगातार सत्य निकेतन की घटना पर बीजेपी सरकार को घेर रहे हैं, लेकिन 10 साल से उनके ही घर के पास बने जो हॉस्टल थे उस पर उनकी नजर क्यों नहीं गई, क्योंकि उस इलाके से निगम पार्षद भी आम आदमी पार्टी के थे, मंत्री रहे सौरभ भारद्वाज, विधायक थे वहां पर, तब ये लंबे वक्त से पीजी कैसे चलता रहा, कैसे उसमें क्रैक आया, इस पर अब सवाल पे अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा, इस पर अब सवाल जो है वो बीजेपी आम आदमी पार्टी के पाले में करती हुई नजर आ रही है। लेकिन जो विजुअल सामने आ रहे हैं कि देर रात के वक्त सरकार ने तुरंत एक्शन जो है वो लिया, बिल्डिंग को खाली कराया, इसके अलावा वोकेशनल कॉलेज में जो छात्र छात्राएं हैं उनको शिफ्ट किया गया है ताकि बच्चों को सेव किया जाए, उनके रहने की व्यवस्था, उनके खाने पीने की व्यवस्था जो है वो सरकार करा रही है, साथ ही साथ जिस पीजी जिस हॉस्टल में वो रह रहे थे उनकी सिक्योरिटी मनी दिलाने का आश्वासन भी है जो सरकार की तरफ से दिया गया है। यानी
7: इस वक्त दिल्ली के उत्तम नगर में है और यहाँ पर एक निर्माणाधीन इमारत पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे यहाँ पर जो छज्जा निकला हुआ था वहाँ पर बुलडोजर का इस्तेमाल करके इस छज्जे को गिराया जा रहा है। हमारी जब अधिकारियों से बात हुई तो अधिकारियों का ये कहना है कि यहाँ पर जो छज्जा है वो निकाला गया है, नक्शा पास नहीं हुआ, जिस वजह से यहाँ पर ये कार्रवाई की जा रही है। सीधी तस्वीरें दिल्ली के उत्तम नगर से हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर ये कार्रवाई इस वक्त चल रही है। बुलडोजर का इस्तेमाल करके इस लगभग 4 मंजिला इमारत को गिराया जा रहा है। अधिकारियों का ये मानना है कि जो परमिशन लेने की जरूरत थी वो नहीं ली गई और हमने इसी तरह की कार्रवाई दिल्ली के कई इलाकों में देखी है, चाहे वो फिलहाल उत्तम नगर की हो या पांडव नगर, लक्ष्मी नगर, सत्य निकेतन और कई इलाकों में इस तरह की कार्रवाई जो है वो की जा रही है। सीधे इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे सहयोगी जगन्नाथ जूम करके आपको दिखा देंगे कि कैसे यहाँ पर छज्जे को गिराया जा रहा है। एमसीडी के अधिकारी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात भी कर लेते हैं, समझते कि किस तरह की कार्रवाई यहाँ पर हो रही है। आपका नाम?
8: मेरा नाम अभिषेक पांडे है। तो ये
7: यहाँ पर क्या कार्रवाई हो रही है?
8: यहाँ पे यही बिना नक्शे के अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन थी जिसको लगभग 1 महीने पहले बुक किया गया था और आज फिर उस पर डिमोलिशन की कार्रवाई हो रही है।
7: अच्छा, ये आपको इसके बारे में जानकारी कब मिली सर?
8: जानकारी ये पहले से ही ग्राउंड फ्लोर से ही बुक है और पहले से ही जानकारी है, पहले से ही इस पे कार्रवाई हमारी चल रही है। लगभग
7: जो लोग इस वक्त कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और जिनकी इमारतों के नक्शे पास नहीं है उनको आप क्या कहना चाहते?
8: नहीं, यहाँ पे ये तो ऐसा ये रेगुलराइज्ड एरिया है और यूआर एरिया है तो इसमें नक्शा पास हो सकता है, तो हम इतना खर्च अभी भी हो रहा है तो हम क्यों ना वो नक्शा पास कराने की अपनी फी वगैरह जमा करके और चीजों को नक्शे से बनाया।
7: तो अधिकारियों को ये कहना है मानसून कि यहाँ पर नक्शा पास नहीं हुआ और जिन मापदंडों को फॉलो करने की जरूरत थी वो नहीं हुआ, इसीलिए बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। मेरी मौजूदगी उत्तम नगर के एक रिहायशी इलाके में है और ये रेगुलराइज कॉलोनी है। हालांकि होता ये है कि रेगुलराइज कॉलोनीज में लोग जो है वो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, जो नियम होते हैं उनका पालन नहीं करते, इसीलिए एसपी को इस तरह की कार्रवाई करनी पड़ रही है। देखिए ये सरिया जो है वो रखा हुआ था, ये दरअसल कंस्ट्रक्शन पिछले काफी महीनों से चल रहा था, लेकिन जब एमसीडी को इसके बारे में जानकारी मिली कि छज्जा यहाँ पर निकाला गया है, एक्स्ट्रा मतलब जो नक्शे से बाहर छज्जा है वो जब निकाला गया, तब उसके बाद एमसीडी के जो अधिकारी है वो यहाँ पर पहुंचे और बुलडोजर की कार्रवाई दिल्ली के जनक उत्तम नगर में हम इस वक्त होती हुई देख पा रहे हैं। जी मंच
0: All right, so Piyush there bringing us the visuals from Uttam Nagar in Delhi, where action against unauthorized construction and under construction building now being demolished. Remember viewers, for the last couple of days we've been asking this very question, why is there no action when unauthorized construction takes place? We are finally seeing some glimpses of the government agencies swinging into action. Last night, we had a PG in Chirag, Delhi being evacuated. Today, we are seeing these visuals that my colleague Piyush just brought to us from Uttam Nagar, where an under-construction house, which was reportedly extended outside of the permitted area, and had an extra floor is being demolished at the moment. But the big question still remains, viewers. Is this going to be just some action for show while the media glare is on unsafe buildings in Delhi? Because it has been decades since these issues have been flagged. Multiple times we've had fires, we've had buildings falling and killing persons. And every single time an incident happens, we see some tokenism, but no concrete action. Piyush is back with me on the line on this story. Piyush, you're at Uttam Nagar, where an under-construction building is being demolished. We're also seeing action being taken from Pandav Nagar, from Nehru Vihar, from Lakshmi Nagar, and some other areas of the city. We have had these buildings on the radar for decades, if not... and some of these buildings have been in areas where unauthorized construction is so rampant that even traveling through the gully, traveling through the street, requires some level of dexterity. What are you picking up today? What is happening? How many buildings are on the agenda for demolition? And why finally, and how long has it really been since the MCD was supposed to be taking action?
7: Well, Anisha, after Satyaniketan incident, it seems like a Delhi government can actually have now swung into action. Right now, I'm present at Uttam Nagar, where an under-construction building is facing the bulldozer action. You can see as to how the terrace of this building is being demolished. And apart from that, there are other areas also of this under-construction building. Those were constructed without taking proper permission from the authorities. MCD officials are also telling us

अब ये जो नाराज फूफा जी है वो चिल्लाएंगे कि ट्रक वालों का क्या होगा, ट्रक कहां जाएंगे, जिन्होंने ट्रक खरीदा है उनका क्या होगा। अब फूफा जी को काम मिल गया, फ्रेट कॉरिडोर के साथ साथ अब भारत में रेल वहां भी पहुंच रही है जहां इतने दशकों तक नहीं पहुंची थी। पहले की सरकार में बजट में एक दो ट्रेनों की घोषणा होती थी और उसके भी साल भर ढोल पीटे जाते थे, जबकि आज देश में साल भर एक के बाद एक नई ट्रेनें चलाई जा रही है।

0: पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पे भी समझौता नहीं कर सकते। आपकी असलियत सबके सामने आ रही।
1: प्रेस कॉन्फ्रेंस करे कोई व्यक्ति तो आंकड़ा बनाम आंकड़ा पे बात हो। जब व्यक्ति प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं करेगा, मोनोलॉग को अपना एकमात्र आभूषण समझेगा, तो कौन उनसे पूछेगा। मैं फिर से दोहराता हूं, आर्टिकल 39 में दो चीजें हैं महत्वपूर्ण, आय की असमानता खत्म करना, आईना देख लें प्रधानमंत्री जी, संपत्ति का संकेंद्रण रोक लो, आईना देख लें मोदी जी, नहीं देखेंगे, लेकिन नहीं देखेंगे क्योंकि दूसरों को वो नाराज फूफा कहते हैं, सबसे बड़ा नाराज फूफा उनके अंदर बैठा हुआ है।
2: अब ये जो नाराज फूफा जी है वो चिल्लाएंगे कि ट्रक वालों का क्या होगा, ट्रक कहां जाएंगे, जिन्होंने ट्रक खरीदा है उनका क्या होगा। अब फूफा जी को काम मिल गया, फ्रेट कॉरिडोर के साथ साथ अब भारत में रेल वहां भी पहुंच रही है जहां इतने दशकों तक नहीं पहुंची थी। पहले की सरकार में बजट में एक दो ट्रेनों की घोषणा होती थी और उसके भी साल भर ढोल पीटे जाते थे, जबकि आज देश में साल भर एक के बाद एक नई ट्रेनें चलाई जा रही है।
3: आई वंडर नाउ दो what do the men who have the designation or the position of the FUFA have to say to this, because clearly it's got all negativity right now in our political discourse. The BJP has stepped the ante a level further. They have put forth an AI video where they are using this term of the FUFA, the Naraz FUFA, and how that is the Congress party, the opposition, that's Rahul Gandhi, and how their government in fact has put forth so many of these initiatives in different aspects. Let's take a look at that video too.

0: अब ये जो नाराज फूफा जी है वो चिल्लाएंगे कि ट्रक वालों का क्या होगा, ट्रक कहां जाएंगे, जिन्होंने ट्रक खरीदा है उनका क्या होगा। अब फूफा जी को काम मिल गया, फ्रेट कॉरिडोर के साथ साथ अब भारत में रेल वहां भी पहुंच रही है जहां इतने दशकों तक नहीं पहुंची थी। पहले की सरकार में बजट में एक दो ट्रेनों की घोषणा होती थी और उसके भी साल भर ढोल पीटे जाते थे, जबकि आज देश में साल भर एक के बाद एक नई ट्रेनें चलाई जा रही है।
1: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: CBU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: अब ये जो नाराज फूफाजी है वो चिल्लाएंगे कि ट्रक वालों का क्या होगा, ट्रक कहां जाएंगे, जिन्होंने ट्रक खरीदा है उनका क्या होगा। अब फूफाजी को काम मिल गया, फ्रेट कॉरिडोर के साथ साथ अब भारत में रेल वहां भी पहुंच रही है जहां इतने दशकों तक नहीं पहुंची थी। पहले की सरकार में बजट में एक दो ट्रेनों की घोषणा होती थी और उसके भी साल भर ढोल पीटे जाते थे, जबकि आज देश में साल भर एक के बाद एक नई ट्रेनें चलाई जा रही है।
1: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: EU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU
1: सोच बदलो और बैंक भी।
2: Every story finds a place. Every voice gets a platform. Every side has its say. Your channel for every headline. Prime Team on India Today, India's only democratic newsroom.